وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير

और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख, जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब हैं।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊ शुरू थी वयू आहिन जेकडे तवा जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वणायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणज पहिरियों कदम वधायो मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: लोगों की बात आए तो उसको मान बैठे, जैसे इस केस में हो रहा है कि वो बुराई की दावत दे रही है और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि मैं एक गुनाह का काम करूं। वो हदीस है कि अर्श के साए तले सात लोग होंगे, उनमें से एक कौन? वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी। और इसी तरह जवान ही के बारे में एक और बात आती है कि एक ऐसा मर्द जिसको कोई ऊंचे घराने, ऊंचे घराने की मुराद क्या है कि इन्फ्लुएंशियल हो, खूबसूरत, वो बुराई की दावत दे और वो उसको कबूल ना करे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। अब देखे ना कि मर्द अमूमन खुद औरतों की तरह मायल हो जाते, लेकिन एक शख्स, एक मर्द जो अपनी निगाहों को बचा के रखे, इज्जत आबरू को बचा के रखे, और कोई औरत उसको अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करे, तो मर्द का ऐसे मौके पे संभलना बात है। तो जो ऐसे में खुद को संभाल जाए, दूसरे की दावत को ठुकरा दे, और आप देखें ऐसी दावत ठुकराना किसी की इज्जत नफ्स पे चोट मारना है, जो नाकाबिले माफी जुर्म हो सकता है किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के सामने कि अच्छा तुमने मुझे नाराज किया, अब देखो तुम्हारी क्या बनती है दरगत। फरमाया ऐसा शख्स अर्श इलाही के साए तले होगा, अल्लाह के प्यारे बंदों में से की खातिर गुनाह खाए, ये मैंने एहसान किए हैं, उसने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उसी की नाराजगी का काम करूं। अच्छा हम लोगों का हाल क्या होता है, जब हमें कोई खुशी मिलती है हम अल्लाह को ज्यादा नाराज करते, कोई शादी का मौका हो, कोई पार्टी का मौका हो, हम हर गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिनको आम दिनों में हम बुरा कहते हैं उन दिनों में हम खुद भी कर लेते हैं साथ। कितनी अजीब बात है ना, कितनी नमक हरामी है। और इसी तरह इंसानों के साथ जब अपना कोई मफाद सामने आता है तो दूसरे को काट के परे रख देते हैं। तो अल्लाह का फैसला क्या, इन्नहु ला युफ्लिहुज जालिमून, जालिम कामयाब नहीं हो सकते, वक्ती तौर पर वो कितने भी ताकतवर हों। ये कितनी समझदारी की बात थी इनकी, और इतनी बड़ी आफर को ठुकरा दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: ਕਦਾ
1: ਹਰ ਬਾਰ ਜਾ ਨੰਦੜਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧਨ ਤਾ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਇਨਨ ਕਦਮਨ ਕੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਕੇ ਤੋ ਇਨਹੀ ਕਰੇ ਜਦਹੀ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਨ ਜੀ ਦਸਤਕ ਥੇ ਤਾ ਦਰ ਖੋਲਿਓ ਐ ਪਹਿੰਜੇ ਬਾਰਨ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਖਾਂ ਬਚਾਓ ਜਬ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਨ ਮੇ ਮੁਦਾਫਤੀ ਤਾ ਖਵਾਬਨ ਕੇ ਉਡਾਮ ਰਹਿਣ ਤਾ ਪੋਲੀਓ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी نپدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماہی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
4: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा
6: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां
7: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
8: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल
9: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
9: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
11: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे जे चेक थे जो सूर घटि ॿुधण

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03-01-3086-851

0: 80 83 47।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

एल आर के लिखी सेंड कंदो पंहिंजो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो पोइ सेंड कंदो 888 ते ऐं फेसबुक जी असांजी आई डी आहे GFM88 जी आई डी आहे असांजो पेज आहे फेसबुक जो तव्हां उन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांजे कॉल ज़रिए बि पंहिंजा नाला नोट कराए सघो था सवाल जो सही जवाबु ॾेई सघो था असांजो नंबर आहे 0333-22-13-22-88 छो त जंहिं ॿिए दोस्त खे जेका बि सहूलियत हूंदी आहे तव्हां उन ते पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं सवालु तमामु आसान आहे थोरो गौर कयो पंहिंजे वॾड़नि सां सलाह मशवरो ज़रूरु कयो छो त उमिरि जा जेके वॾड़ा हूंदा आहिनि उन इन्हनि गुजातनि खे ॼाणींदा आहिनि न गुझ लिक त उन जो मक़सदु छा आहे उन जी माना छा आहे ऐं उन गुजरात में कहिड़ा लफ़्ज़ आयल आहिनि ऐं उनखे असां कीअं ॻोल्हियूं त उहे मिली पवंदा आहिनि ऐं मां तव्हांखे आसान करे ॾिनी आहे गुजरात त ॿिनि पवनि ते मुश्तमिल आहे त उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान न इहा असांजी गुजरात आहे असांजो सवालु आहे साईं मुंहिंजा सीने में दिलि दिलि में दर्द दर्द में तशंगी तशंग में आरज़ू आरज़ू में हसरत हसरत में हिजाब हिजाब में उमीद उमीद में ख़्यालु ख़्याल में तसवर तसवर में तस्वीर तस्वीर में तूं तो में अदा अदा में हया हया में नज़ाकत नज़ाकत में शरारत शरारत में गुस्सो गुस्से में बनावट बनावट में मोहबत मोहबत फिदा जी हसीन तख़लीक़ आहे

जी समझ आया। प्रोग्राम रोशन सुबह में असां के गुजारत नोट कराई आ। गुजारत जेका बिन पवन ते मुश्तमिल आहे, ऐं गुजारत के बुधण सां थोड़ो सोच ऐं समझण जी ज़रूरत आहे। ऐं जेकर अव्हां खे का ॻाल्हि समुझ में नथी अचे त पंहिंजे झूनड़नि खां, पंहिंजे वॾनि बुज़ुर्गनि खां अव्हां अहिड़ी मालूमात गुजरात वारी वठी सघो था। इन में को ऐब कोन्हे, चवंदा आहिनि त पुछणा न मुंझणा, तव्हां मालूमात वठी सघो था। असांजी अॼु जे प्रोग्राम जी गुजरात आहे त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न। जी हा, उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न। साईं जा जिते पदमणियूं प्यार जे पटनि ते प्रीत सां बेलड़ा खणी कुंजनि जे कतारनि जीअं घूर मोटनि थियूं, जिते मासूम ॿारड़ा माउ खां लिकी वसकारे जे कांडेरा

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं। हिन वक़्तु असांजे स्टूडियो जे घड़ियाल में सुबुह जा ॾह पिया थियनि। हिन वक़्तु वक़्तु आहे ख़बरुनि जो ऐं ख़बरुनि खां बाद में न्यू कमर्शियल ब्रेक थींदा, उन खां बाद में वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

0: एम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: कम वठन दुरुस्त कदम खड़ा फॉक्स न्यूज से ालाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सदर मसूद पजुक शान से मुलाकात जो इशारो भी दई छो। सदर ट्रंप है गडियल कौमन के जनरल असेंबली के इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पजुक शान से मुलाकात थी सके थी। ईरान लाए ब ऑप्शन या तेहरान पैंो रवैयो दुरुस्त करे मुहिदो कर वे या तबाही है मुकमिल मुआशी बर्बादी लाए तैयार थी वे। खातमुल नबी हेडक्वार्टर्स जे अमेरिका इसराइल के कहीं भी अग्राही की सूरत में शदीद जवाबी कार्रवाई की वार्निंग खातमुल नबी हेडक्वार्टर्स जे तर्जुमान है तो ईरान से हमलो थो तो अमेरिका जहाँ खिते में मौजूद समूरा आडा निशाने से हूँ रिपोर्ट्स हैं तो ईरान खिलाफ बीहर हमले की तैयारी थी रही है। अमेरिका इसराइल जो खिते के कड़न मुल्क गुजो इजलास खबर है जर अमेरिका खिते के मुल्क का गलती कई तो उनमें जो जवाब बिना कें मुसलत जे दिनों विंदो।
4: इस्लामाबाद मार्च हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। तय किया हुआ है कि हम अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी बैड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे। हत्या टैक्स जद्दा टैक्स की सूरत में है ये पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है।
3: पेट्रोलियम लेवी खिलाफ जमायत इस्लामी जो मार्च इस्लामाबाद तरफ रवा दवा हाफिज नईमुल रहमान की अगवाणी में कराची मां निकल ट्रेन मार्च जो नवाब शाह भिरियार रोड रोड़ी ए बेन शहर में पहुंचण ते शानदार इस्तकबाल। हाफिज नईमुल रहमान जो ट्रेन मार्च के खिताब कंदे चवण हो तो इस्लामाबाद में अवामी समुंड उथलंदो वफाकी लेवी ए टैक्स के नाले से भत्तो वठी रही है पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के वापस वठनी पवंदी। असांजी जिम्मेवारी आए त पुरतशद्दुद जत्थो इस्लामाबाद अचण न ॾियूं। जमायत इस्लामी वारा पुरअमन आहिनि। सुद समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारण चयो आहे त पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण न ॾींदासीं। जमायत इस्लामी वारनि सां राब्ते में आहियूं, हू पुरअमन ऐं समझ वारा आहिनि, कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾियुनि ॾुखाइनि सां मुआशी इस्तक़ाम हासिल कयो आहे, हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे, पर धरणा तरक़ी जे सफ़र में रुकावट बणजंदा। अहिड़ियुनि हालतुनि में धरणा हुअण समझ खां ॿाहिरि आहे। मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। ऐं पीटीआई बानी जी भेण लाहौर मां गिरफ़्तार। डीसी लाहौर जो चवण आहे त अलीमा ख़ान खे 3MPO तहत हिरासत में वरितो वियो आहे। पार्टी ज़रियनि मूजिबि अलीमा ख़ान खे रोड तां हिरासत में वठी कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो त अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तारी हालतूं ख़राब करण जो पहिरियों क़दम आहे। अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करणु या नज़र बंदि करणु तशद्दुद ऐं छिकताण खे हथी ॾियण जे बराबरि आहे। अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तार जी मज़म्मत कयूं था।
2: कॉलेज
5: ऑफ

0: मौजूद आहिन एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल, खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफूज बनायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों कदम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश ख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस जो वारंटी सर्विस एरिया, मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद आटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन नज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल आरपीएसमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद आटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज जल्द फॉर रात को मिल्क राइज, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलबु

0: जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: धार माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल माहिरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ता कज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजुरी।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

साईं मुंहिंजा ख़्वाब जेसीं ताबीरनि जे पोपटनि खे तेसीं कंहिं सोचणु जिदोजहद कंदड़ लाइ मायूसी फैलाए थी। अणथक ऐं बिना कंहिं वक़फ़े वारी जिदोजहदी मंज़िलनि जो मुंहुं ॾेखारे थी। वक़्त जूं वीरूं किथे बि हाणे बीहारे सघनि थियूं। कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त नंढा माण्हू माण्हुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, वॾा माण्हू ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, ऐं अज़ीम माण्हू नवनि नवनि ख़्यालनि सोचुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि। ईअं ई नंढा माण्हू वक़्त खां थोरो पोइ ते ऐं वॾा माण्हू वक़्त खां सां गॾो गॾु हलंदा आहिनि। जेकॾहिं वक़्त जूं वाॻूं ओॾां उन्हनि जूं वाॻूं, पर अज़ीम माण्हू पाण खे कॾहिं बि वक़्त जे वाॻुनि हवाले न आहिनि कंदा, ऐं हू वक़्त जे जूं वाॻूं मोड़ण बाबति सोचींदा आहिनि ऐं वक़्त खे हिकु नओं रूप ऐं हिकु नओं दगो ॾियण जी कोशिश कंदा आहिनि, ऐं हू वक़्त जे वाॻुनि खे मज़बूती सां झले मुस्तक़बिल ॾांहुं सफ़र शुरू कंदा आहिनि।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सचल की सर मस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: लाड़काने वासन लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्मेटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियन जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारिज वार चरो पुरानो फट चिटरी लैशमिनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थन वारन जा मसला एलर्जी ए औरतन जे चेहरे ते गैर

0: ज़रूरी वारनि जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वञे थो। यादि रखंदा, हर जुमे ते चमड़ीअ जे मरीज़नि जी मुफ़्त चकास कई वेंदी। डॉक्टर अजीत कुमार, चमड़ीअ जे बीमारियुनि जो माहिर। एड्रेस: अली हॉस्पिटल, वगड़ रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं ऐं आचर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03124344689।
1: डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो, MBBS, FCPS, तजुर्बेकार ऐं माहिर जनरल फिजिशियन। हिते मेडिसिन सां लाॻापियल सभिनी बीमारियुनि जो इलाज कयो वञे थो, जंहिं में मलेरिया जो बुखार, टाइफाइड, खंघ, नज़लो, ज़ुकाम, छातीअ जा इन्फेक्शन, शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, अल्सर, कब्ज़, मैदे ऐं हाज़मे जा मसाला, थायराइड जा मसाला, मोटापे जो इलाज, वाइटमिन्स जी कमी, थकावट,
2: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन का इनेकार, मेहनती मुशर तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो

0: पर 0300-338-5569।
1: हथे गुल मींदी पेरी गुल मींदी
2: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
2: मां भी वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

जी समय प्रोग्राम है रोशन सुबह और रोशन सुबह में मां वहां के आज जो सवाल नो है जका जो कि गुजारत है वह तमाम आसान हुई पर उनके पांजे इलाके वाला यानी थरवासी जके असा मिठी के इलाके जा मातली के इलाके जा बदीन के इलाके जा मीरपुर खास के इलाके जा भी जके ने दोस्त उन गुजारत के कोन भनी सकेन त असा वरी भी चंदासी कोशिश कयो जेकॾहिं हिकिड़ा पंज ॾह मिंट तव्हां वटि आहिनि पंज मिंट तव्हां असांखे सवाल सां सही जवाबु ॾेई सघो था त असांजो गुजारत असांजी इहा ई आहे त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न इहा ॾिठ आहे तव्हां थोरो गुजारत खे सोचजो सम्झजो ऐं पंहिंजे बुज़ुर्गनि पंहिंजे वॾड़नि खां सलाह ज़रूरु वठिजो त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न हिकु क़ुरान शरीफ़ जा जेके नाला आहिनि इहो पहिरियों पावा उन में भॼी सघे थी ऐं ॿियो देस कहिड़ो आहे कहिड़ो इलाइक़ो आहे उहो तव्हांखे नालो ॿुधाइणो आहे गुजारत तमामु आसान आहे ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ त इहा असांजी हुई गुजारत वरी बि तव्हांखे पंज मिंट आहिनि तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था पर हिन वक़्तु असां तव्हांखे मालूमात ॾींदासीं हिन वक़्तु असांजो सेप्टेंबर महीनो हले पियो अॼु 21 तारीख़ आहे सेप्टेंबर महीने जी त सेप्टेंबर महीने हवाले सां तव्हांखे थोरी मालूमात ॾींदासीं पहिरियों बि तव्हांखे असां मालूमात ॾेई चुका आहियूं सेप्टेंबर जे हवाले सां पर अॼु तारीख़ जे बिनिस्बत मां तव्हांखे ॿुधाई हलां त ईसवी साल जो ई नओं महीनो आहे जेको सेप्टेंबर महीनो आहे इहो नओं महीनो आहे ऐं सेप्टेंबर लातीनी ज़बान जे लफ़्ज़ सेप्टम मां वरितल आहे जंहिंजी माना आहे सतों पुराणे रोमन कैलेंडर में ही महीनो सतों हो पर यूरोपी कैलेंडर में हिन जो नंबर नओं आहे ऐं हिन ई महीने दौरान 21 सेप्टेंबर याने अॼोको जेको ॾींहुं आहे 21 सेप्टेंबर ते सिजु बिल्कुलु ख़तिस्तवा ते चमकणु लॻंदो आहे ऐं सॼी दुनिया में ॾींहुं राति बराबरि थियनि था उत्तर अधु गोल में खिज़ां जी मौसम ऐं ॾखण अधु गोल में बहार जी मौसम थिए थी हिन महीने में 30 ॾींहं थियनि था त साईं मुंहिंजा इहा आहे पंहिंजो सेप्टेंबर महीने जे हवाले सां अव्हां ताईं थोरी मालूमात ऐं हिन वक़्तु मास्टर मंज़ूर कलाम आहे अव्हां जे नाम पिया कयां

जी हाँ समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अवे इंतजार पे सवाल के पे गुजारत के सही जवाब बुधण जो अवे इंतजार जरूर है अवे इंतजार जरूर हों जा नाला भी प्रोग्राम में शामिल थन पर असोग प्रोग्राम में सभी दोस्त कोशिश कई है प्रोग्राम में वक्त दिनो है टाइम दिनो है काफ़ी दोस्त जो है उको तकरीबन तम खान पुछ

आहे त जेको ॿियो पाओ हो देस वारो उहो थर जो इलाइक़ो मार उमर मारी थी चवे त उमर मुंहिंजे देस में क़ुरान न, क़ुरान शरीफ़ जा नाला आहिनि त क़ुरान करीम ऐं क़ुरान शरीफ़ क़ुरान मजीद ऐं फुरक़ान हमीद फुरक़ान त उहो चए थी मुंहिंजे इलाइक़े में फुर कोन्हे चोरी कोन्हे मुंहिंजे इलाइक़े में अमन आहे मारी चए थी त उमर मुंहिंजे देस में फुर कोन्हे अमन आहे उन दौर जो जेको हीअ ॾिठी हुई जेका गुजारत हुई उहो चवे थी त उमिरि मुंहिंजे देस में फुर कोन यानी क़ुरान न फुरक़ान फुरक़ान हमीद क़ुरान शरीफ़ जो नालो आहे क़ुरान शरीफ़ बि क़ुरान जो नालो आहे ऐं क़ुरान मजीद बि आहे क़ुरान करीम बि आहे क़ुरान शरीफ़ जा तमामु घणा नाला आहिनि।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359212020।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Aashiq Honda showroom Mehrapur Atlas Honda motorcycle to per Atmat Aimba Akhtar 3S dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur jithe nayi motorcycle ji sale company aje mukarrar kel rate te dastiyab hai. Service center Atlas Honda Limited jo warranty claim center service area jithe Honda motorcycle ji behtareen service kai vendi hai. Honda company aja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood. Aashiq Honda Motors te pehje Honda motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese stitching machine je zariye jeh mein mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better. Fuel adjustment RPM ji adjustment computerized Japanese machine zariye kai vanye thi. Honda je qualified technician je zair nigrani. Aashiq Honda Motors address Indus bypass Nast Railway Line Mehrapur Rabte Jilai Asim Hussain Arai 0307 3592120.
3: ਹਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਨੰਡੜਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧਨ ਤਾ ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਇਨਨ ਕਦਮਨ ਕੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਕੇ ਤੋ ਇਨਹੀ ਕਰੇ ਜਦਹੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਨ ਜੀ ਦਸਤਕ ਥੇ ਤਾ ਦਰ ਖੋਲਿਓ ਐ ਪਹਿਜੇ ਬਾਰਨ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਖਾਂ ਬਚਾਓ ਜਬ ਕਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋ ਤੇ ਇਹ ਕਤਰਾ ਬਾਰਨ ਮੇ ਮੁਦਾਫਤੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਵਧਾਇਨ ਤਾ ਐ ਇਨਨ ਜੇ ਖਵਾਬਨ ਕੇ ਉਡਾਮ ਡੇਨ ਤਾ ਪੋਲੀਓ ਮਤਲਬ जिंदगी भर जी माजूरी.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज. एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569. खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो. जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार. फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर. नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है. आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं. पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94.

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: ईरान के तबाह करणो आहे, मैशियत सख्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे, मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया. अमेरिकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाती मरहले ते पहुची वियो आहियां. ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं. गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी. ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान. ख़त्मुल नबिया हेडक्वार्टर्स जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा खिते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा. अमेरिका सां हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो. बलूचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन. हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियन मौजूद पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो. फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो, हथियार हथ कया विया. शहीद थियल पाक फ़ौज जे ॿिनि आफ़िसरनि समेत छह जवाननि जी जनाज़े निमाज़ पिशावर में अदा कई वई. जनाज़े निमाज़ में घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, गवर्नर KPK फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ऐं ॿियनि जी शिरकत. शहीद कैप्टन अबूज़र फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट जनरल शिराज़ नज़ीर ऐं ॿियनि जी जनाज़े निमाज़ अदा कई वई. ISPR मूजिबि शहीद आफ़िसरनि ऐं जवाननि जे मड़नि जी तदफ़ीन अबाणनि इलाइक़नि में फ़ौजी एज़ाज़ सां कई वेंदी. गुज़िरियल ॾींहं दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले दौरान पाक फ़ौज जा ॿ आफ़ीसर ऐं जवान शहीद थिया हुआ. वरी वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो. अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर ताईं जारी रहंदी. 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो जा बचाव वारा फोड़ा पीआरिया वेंदा. इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो ख़तम कयो वेंदो. पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी. आलम समूरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि. पेट्रोलियम लीवी ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो कराची खां निकितल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो. मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव. सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमायत इस्लामी जे अमीर जमायत हाफिज़ नेमुल चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबी सां मुकमिल कयो आहे. हुकुमराननि खे लीवी वापसि वठणी पवंदी. कंदकोट भरसां रसालदार रोड ते हथियारबंदनि जी फायरिंग. पुलिस अहलकार शहीद. हथियारबंदनि पुलिस अहलकार ज़फर सिंधराणीअ खे गोलियूं हणी क़तल कयो. ज़रियनि मूजिबि भंगवार बिरादरी जे हथियारबंदनि पुलिस हथां मुबैना मुक़ाबले में नौजवान जे मारजण वारे पलान में पुलिस अहलकार खे शहीद कयो आहे.

ऐं बंगुबाण भरिसां ॿारनि जी ॻाल्हि तां जहिड़ो नौजवान क़तल लाश इस्पताल मुंतकिल जवाबदार फरार जलाल जी भरिसां ॻोठ वस्तड़ो में ॿारनि जी ॻाल्हि तां सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े दौरान लठनि जा धक लॻण सबबि नौजवान जलाल सोलंगी मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाके जी जांच जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। आपते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न विञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण ना पहिरियों कदम वधायो।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे
3: हां साईं गाल भी एड़ी आहे
2: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे
3: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे
2: छा छा
3: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन हिए चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो
2: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो
3: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच
2: मां हाणे ही तो वणा त जी असी भी खीर वधायूं ऐ नोट कमायूं
3: हां साईं हां
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ऐ जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
6: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देव नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी نپدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی اخپل ما شمانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماہی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ما شمانو دا بدن دفاعی تا کزیاتوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
7: جا امید کے دیئے جلتے
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865453
9: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
9: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100
11: अस्सलाम वालेकुम अदा
12: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
11: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
12: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
11: न अदा
9: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनवान अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें। वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
4: इस्लामाबाद ते कहें भी चढ़ाई करण न लींदा सी हिन भेरे वंस फॉर ऑल थिंदो के पी जू हालतू सबनी जे सामू आहन। पीडीआई वट अञा भी वक्त आहे, बंद घिटी तरफ न वञे। वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी खबरदार करे छॾियो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त लॉन्ग मार्च थियो त हाई कोर्ट जे फैसले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़गानिस्तान सां लागापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे, हालतूं बरक़रार रहियूं त हज़ारे रुपया पेट्रोल महांगो न मिलंदो।
5: नए सुबह वाला मामला जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
4: घरू वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वारी होट ते कायम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा। सूबन वारो मामलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशियत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे, मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया। अमेरिकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग बाबति फैसलाइती मरहले ते पहुची वियो आहियां। ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण वटां मिली सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी। ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा ख़िते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा। अमेरिका सां हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो। बलूचिस्तान जे पंजकोर वारे इलाइक़े में फोर्स जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूदु पंजकोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे चार दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो, हथियार हथ कया विया।

0: शहीद थे अल्पाक फौज बिन ऑफिसर समेत 6 जवान की जनाजे नमाज पेशावर में अदा कई वही। जनाजे नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर KPK फैसल करीम, कोर कमांडर पेशावर ऐं बेन जी शिरकत, शहीद कैप्टन अबुज़र फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट शिराज नज़ीर ऐं बेन जी जनाजे नमाज अदा कई वही। ISPR मौजूद शहीद ऑफिसर जवान के मरण की तदफीन बार इलाक में फौजी एजाज से कई वी। गुजरियल ढीह दहशतगर्दन से मुकाबले दौरान पाक फौज ऑफिसर जवान शहीद थिया हुआ। वड़े वजीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ्तिताह कर छो। अज का शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर तक जारी रही। 25 लख बार पोलियो का बचाव वारा फुड़ा पियारा वा। इफ्तिताही तकरीब के खिताब कन्दे वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह समूरी दुनिया जी पाकिस्तान में भी पोलियो खत्म करो वो। पोलियो मुहिम में कोताही कड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाय किरदार अदा कर। PTI बानी के टे भेनर के लाहौर में नजरबंद। हलीमा खान का उज़्मा नोरी न्याजी के भी नजरबंद करे कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर वो। DC लाहौर जो चवण है पुलिस की सिफारिश से 3MPO तहत बिन्हीं भेनर के 30 दिन लाए कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर वो। गुजरियल ढीह हलीमा खान के भी नजरबंद कर वो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी। पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में BEd 1.5 साला ऐं BEd 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ BEd डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल, खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण लाइ पहिरियों क़दम वधायो।
5: हर ॿार जा नंढड़ा क़दम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि क़दमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच।
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 खां शाम 5 वगे तई मरीजन जो इलाज कर।

0: 51।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देव नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخبل ما شمانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ما شمانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون و الوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधी का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: नूरे जा पियो रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच।
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
6: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा।
7: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।

बहरापुर जी विजिट करियो। वधीक राबते लाइ डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमण, मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम। कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234। निसार अहमद मेमण, प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम बहरापुर। कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453।

खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जल्द की मुनासिब केयर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है और आपकी जल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज भी रखेगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जो है ना आपको खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है और आपका टाइम बचाने के लिए किया गया है। आपके पैसों में जरा जो है ना वो ऐसा नहीं कि भाई आप जाएं धड़ाधम बहुत ज्यादा महंगे महंगे आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं। भाई ये फार्मूला ऐसा है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो इसे आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। एक्नी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, एक्नी मार्क्स आ चुके हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रंगत का इशू है उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में बस आपने शामिल कर लेना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इतना खूबसूरत सा एहसास होगा कि आप लगाने के फौरन बाद ही कहेंगे आए हाय चस करा दी भाईजान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है और मर्द हजरात हैं खवातीन हर कोई यूज कर सकता है। बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी। ये एक छोटा सा टेलर था और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है। अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस इसकी ये बात जरा मैं आप लोगों को बताती चलूं, तो डी स्किन का जो फेस वॉश है इसको तैयार किया गया है बड़ी ही मोहब्बत के साथ, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का यूज किया गया है। हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो होता है ना ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर जो है ना तमाम वो चीजें एड की जाती हैं जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए होती हैं, मॉइस्चराइज रखने के लिए होती हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होती हैं। तो हर दिन को अगर आप बेहतर, रिफ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश बनाना चाहते हैं और आपके चेहरे पर ये जो थकन नजर आती है, ये गर्दो गुबार जमा हो चुका है और काफी ऑयल आपको महसूस होता है कि भाई हमारी स्किन बड़ी ऑयली है, तो हम क्या करें, क्योंकि ऑयल को ज्यादा जो है ना आप बहुत सारे प्रोडक्ट लगा चुके होते हैं लेकिन ये ऑयल आपके चेहरे से जो है ना वो ज्यादा ही नहीं है। और ऑयली जिन लोगों की स्किन होती है जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम भी आ चुका होता है। तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा तरोताजा रखने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश बिल्कुल जी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट साबित होने वाला है, आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो इस्तेमाल करते रहिए और जरा खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप अपने इजीली किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल जी आप डायल करेंगे नंबर्स जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ, नंबर्स को डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो वो अवेलेबल हो सकता है और आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25 970 एंड यू नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा ऐं उतां वञी ईज़ीली परचेज करींदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हांजी खूबसूरती में आणींदो बाबा चार चंड। सो तव्हां बि अगरि खूबसूरत थियणु चाहियो था, खूबसूरती जी दुनिया में कदम रखणु चाहियो था, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी करे ॾिसो। ओके जी, हुन खां अलावा तव्हांजा मैसेजिस आहिनि, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि जंहिंजे तरफ़ बिल्कुलु असां अचूं था, लेकिन मां तव्हां खां सवाल पुछो आहे उन जो जवाबु तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा हलो। सवाल इहो आहे, उहो कहिड़ो डर आहे जेको औरत खे ऐं मर्द खे ख़ूबसूरत बणाए छॾींदो आहे? हां जी, वो कौन सा डर है जो औरत हो या मर्द हो दोनों को खूबसूरत बना देगा? अब आप मुझे बताइए वो कौन सा डर है आपकी नज़र में। और इसी के साथ साथ मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे से गाने भी मौजूद हैं, तो आइए ज़रा गाना सुनते हैं और आप क्या कह रहे हैं आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं। पोस्ट को लगे जरा लाइक और शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

Angie. ॾियो हाल अहिवाल डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो या अञा ताईं कोन कयो अथव बाबा वञो वञो जल्दी करे अचो.

अच्छा भाई, मैंने अभी देखा तो आपके जो पहले वाले मतलब पहले पहले वाले कमेंट्स है ना, वो तकरीबन ही ऊपर चले गए हैं, तो मैं जरा देखती हूँ जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं। और हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ कहते हैं कि जवाब सोचिंग के बाद ये जवाब आया कि खुदा से ओके ओके ओके। और हजार भाई कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है, योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। वहीं भाई आपने लिंक शेयर कर दी है ओके, मैं आपका गाना लगाती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र किया करे। और निदली हमारे साथ कहती है मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें था AI कुछ सालों के बाद इंसान मार देगा, अब ये क्या सच है, लग तो रहा है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं दादा क्या सर खाले जुड़े जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल जी चाचा को तो जरूर यूज करवाइए भाई। और अनवर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तबीयत सही आहे न मुर्कन सा सजायल ये जिंदगी जो पंध खुशिन जो गुलाब पियो मुर्गे सजो हंद दुआ आहे तो हमेशा इयं ही रहन आबाद कहीं खे भी न अचे कोई दिल ते बंद। सही बाबा सही बाबा। हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिर्फ आज कोई अपनी पसंद का, चलिए AI का सही सही सही मैं लगाती हूँ भाई। हजार भाई AI के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं। सही है भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे। और तबीयत मेरी काफी बेहतर है, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। निदली कहती हैं कि पोस्ट पर चैट नहीं करो, आप लोग हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं, ये बिल्कुल यही रीजन है, जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं बंडल ऑफ थैंक्स बेटा। अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताएं तो। इंतजार अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओके तमाम के बीचों था भली करी आया। चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है, मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, आप डी स्किन फेस वॉश यूज कर सकते हैं, डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा देंगे और आपके चेहरे पर चार चांद लगा देंगे, तव्हांजे चेहरे जो ऑयल भी कंट्रोल थी वेंदो ऐं तव्हांजी खूबसूरती में भी इजाफो अची वेंदो।

पहिरियां अंगुल छॾियां पेर पोइ रखिजां पंहिंजी गाॾी मां पेर पोइ रखिजां हलाए अच्छा वफ़ा शहज़ाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीब आबाद मोरी खां तव्हां असांजे प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मोहबतूं प्यारे सोने भाजू और इंतज़ार भाॻे ते टॉपिक पढ़दा हया और शर्म ओकी ओकी जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहते नाइस यो मैम आरजे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी असां नानाणनि जे घोट वेठा आहियूं शिकारपुर वारा माण्हू बि बार बार डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कनि पिया ऐं शिकारपुर में बि हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे मां पुछा कराई बिल्कुल मूंखे इहा ई ख़बर पई त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफ़ा ज़ोरो शोरो से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वाले लोग हमें सुन रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं

हाँ भाई, तव्हां बि नखरा कयो, तव्हांखे बि फुल मोकल आहे, पर पहिरियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे? पोइ तव्हांखे नखरा बि ठहंदा। गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आबाद से, आपने हमें ज्वाइन किया है, जबरदस्त कंपेयरिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहे आप भी। और जी अनवर भाई हमारे साथ हैं।

अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि उस्ताद शागिर्द खां पुछो तो बुधाए शादी ऐं जंग में केड़ो फर्क आहे। शागिर्द एकदम जवाब डिनो, उस्ताद महसरम जंग में दुश्मन सा समझौतो करण जा कुछ मौका मिलंदा आहिनि, पर शादी में को बि समझौतो नथो हले, उते सिर्फ़ गैर मशरूत शिकस्त तस्लीम करणी पवंदी आहे। केॾा त सतायल आहियो अला तव्हां सभु। जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, निगत नाज आ चुकी है, इंजॉय कीजिए निगत नाज को। और मुगल उमरानी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, स्टिकर सामने शेयर कर दिए हैं। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम, अदी सदरा बिल्कुल ठीक ठाक आई तमाम चेवा, अल्लाह पाक तमाके खुश रखे, हमेशा मुस्कुराइंदा रहो, माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन लाजवाब। कंपेयरिंग आई गोठ आगा खान जतोई लाड़काने खां मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सिर जतोई, तमाम भाउन जो मोहब्बतूं प्रोग्राम के पसंद कयो पिया। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे खूबसूरती जे लाइ आहे। आई तमाम मर्द हज़रात, तमाम खवातीन, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, आई फायदो हासिल करे सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, आई सुणा सुणा थी वञो।

अच्छा अली रजा लगारी भाई हमारे साथ है गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी भाई सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका शो तमाम नाई से सॉन्ग हाले। अच्छा चलें ठीक है ये गाना आपको सुनाएंगे और कहते हैं प्लीज प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारे, सिस्टर हमारे गांव में ब्यूटी क्रीम नहीं मिलती है, आप बोल रही हैं सिस्टर। अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ, तो जो नंबर आपको बताया ना बिल्कुल उस नंबर के ऊपर आप रابطہ करके अपने गांव में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से नंबर के ऊपर रابطہ कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइएगा और नाम जरूर उन्हें बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम अवेलेबल कराना चाहते हैं। हिदायतुल्लाह भेज दीजिए, आपका गाना भी लगा देंगे। निधि कहती है अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए नहीं ऊपर चले गए। जी फहीम आपका जवाब मैंने देख लिया था और शायद पहला जवाब आप ही का था। रमेश ठाकुर हमें सुन रहे हैं फ्रॉम सुल्तानाबाद। ओके रमेश भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच के साथ। चलिए जी यहाँ पर आप जरा हमारी पोस्ट पर बने रहिए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जी हम जरा न्यूज ब्रेक की जाने में जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: वंस फॉर ऑल को कोई ना कोई चीज करेंगे ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
4: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण न ॾींदासीं हिन भेरे वंस फॉर ऑल थींदो केपीके जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे बंद घिटी तरफ़ न वञे वफ़ाकी गुरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लॉन्ग मार्च थियो त हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ते रू मूजिब अमल कयो वेंदो हिन भेरे ईअं नथो थिए त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहनि लाइ बंदि थी वञे हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: भारन लाइ खुशखबरी 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरनि में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बणाए हर 5 साल ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि वटि दस्तियाब आहे

स्वामी जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली मेहरापुर नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। जनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो बताइए जल्दी से हमें ताकि हमें पता चले कि भाई ये जो खूबसूरत से लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं ये डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं जनाब। और आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं बल्कि हमेशा के लिए हसीन खूबसूरत और पुरकशिश बन सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा तो मर्द हज़रात या फिर ख़वातीन आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक मेडिकेटेड फार्मूला है तो भाई टेंशन की कोई बात ही नहीं बनती। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना इजीली आप जो है हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने से मतलब ये कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो या फिर किसी भी तरह की आपकी स्किन हो तो उसके ऊपर आप इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोग जो है ना वो अच्छे से जानते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि सिर्फ आपने दो रातें इस्तेमाल करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको इतना प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ दो दिनों में वाजे नतज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और जदीद अज्जा से ये तैयार की गई है जनाब जिसके अंदर आपको पता ही है कि वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, पॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है जनाब ताकि आप लोगों की स्किन जो है वो चमकदार हो जाए, डार्क सर्कल्स खत्म हो जाए, आपके चेहरे पर जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना वो खत्म हो जाए या फिर आपके चेहरे पर जो है ना रंगत बहुत ज्यादा डिम हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं तो इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है ना इसका इस्तेमाल करने के बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये 2-in-1 फार्मूला बना देता है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। इससे ये होगा कि भाई आपके चेहरे पर अगर आप ये नाइट क्रीम यूज करते हैं ये है तो बेसिकली नाइट क्रीम लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, कोई बड़ी सी आपने ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और जनाब वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसे आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दो रातों में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है तो जरूर से आप ट्राई करके देखिएगा। मैं तो चाहती हूँ आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपके चेहरे को चमकाने वाली और आपके चेहरे पर इतनी जबरदस्ती खूबसूरती लाएगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान क्या बात है, हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नहीं, नाम जो होता है ना वो नहीं होता बल्कि अपनी जिल्द की सफाई, मुनासिब केयर और रोजाना की अच्छी आदत भी आपको खूबसूरत बना सकती है। अगर आप ऐसा ही ख्याल रखते हैं कि भाई अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे, रोजाना अपने चेहरे को डी स्किन फेस वॉश से हम जरा वॉश करते रहेंगे, क्लीन रखेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रोजाना हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो जब आप ये प्रोसेस डेली बेसिस के ऊपर जब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं तो आपको इतना खूबसूरत सा एहसास अपनी स्किन के अंदर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो ये दोनों चीजें आप साथ में यूज कीजिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना हम क्रीमें नहीं लगाते, हमने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई या फिर उन्होंने पहले क्रीमें लगाई थी उन क्रीमों ने आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं दिया और उस वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा ये आ चुका है कि भाई क्रीमें तो लगानी नहीं चाहिए क्योंकि क्रीमें अच्छी नहीं होती। जो खास करके लोग मैंने देखे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रीमों से थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं तो आप लोगों को ये मैं बता दे चलूं कि जो क्रीमें होती है ना वो आपके चेहरे पर खूबसूरती लाने के लिए होती है और खास करके जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन के फेस वॉश का यूज करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर जो रंगत आती है, जो निखार आता है, जो खूबसूरती आती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको मिल जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये चीज भी जरा आ जाती है, आप बोलेंगे कि भाई आप फायदे तो बता देती लेकिन डी
डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कैसे करना है ये तो आप बताते नहीं है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है. ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ रॉकेट साइंस लगा लेनी है. आपने बस रात के टाइम जो है ना सोने से पहले एक काम करना है कि अपना फेस वॉश करना है. अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से, और फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए और क्लीन करने के बाद सुखा लीजिए चेहरे को. ऐसा होता है ना जिन लोगों के चेहरे की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड किया करें. जो भी फेस वॉश करने के फौरन बाद ही टॉवल से अपना फेस वॉश जो होता है ना फेस को सुखाने लग जाते हैं, तो टॉवल का यूज मैं तो कहती हूँ कि भाई अपनी जिंदगी से जरा आउट कर लीजिए. खास करके अपने फेस को मत पोछा करें टॉवल से, क्योंकि टॉवल के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फेस पर आ जाते हैं. उससे फिर आपके चेहरे पर एक्ने जो है ना उसका रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो अगर आप एक्ने को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ आदतें अपने अंदर भी अपनानी होती है और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना होता है. तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को ना सुखा लीजिए अच्छे से. उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है. उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी. आपने मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए, और लगाने के बाद जो है ना आपको इतना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा. दो रातें जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई इतने अच्छे कमाल के हमें रिजल्ट मिल चुके हैं. आपकी रंगत में इजाफा होगा, आपके चेहरे पर जो ये खतरनाक से असरात होते हैं ना, जैसे आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम है, एक्नी के निशानात हैं, या फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझा सी चुकी है, तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी. आपके चेहरे पर एक निखार होगा, एक ग्लो होगा और एक खूबसूरती होगी जो कि आप वाज़े देख सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराएंगे तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह पंजवी 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 033-27-34 नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया 033-27-38-43-09 बुड़ी 303 है 73-84-309 ही नंबर तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से. नंबर डायल करण खां फौरन बाद ही तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करायो वेंदो. सो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो, पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्याल रखो, ऐं असांखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज़ कई कोन कई, ऐं न कई आहे त छो न कई आहे, जल्दी कयो बाबा. ऐं असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ऐं मूंखे ॿुधायो किथां किथां तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे. ऐं टॉपिक मूं अव्हां खां पुछियो आहे, मूंखे ॿुधायो उहो कहिड़ो डर आहे जेको औरत खे खूबसूरत बणाए छॾींदो आहे.

अच्छा हिकड़ी गाल याद अच्छी वही पर छने सहाली कौन थी बुधाया में। अच्छा अगर तहां भी डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर था तो मुझे लास्ट में बुधाए जो यहां पर पैनल की जाने बातें तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी बहुत ज्यादा वाले तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं। और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है वरियाम अली जतोई।

ओके जी बरियाम लिखते हैं कि सिद्रा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक्का सा सलाम था कयूं इन वीआईपी सफा शो आहे थैंक यू वेरी मच बरियाम और हमारे साथ ही जी गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम तवां के प्यारा भाई हबीबुल्ला थेबू कहते सॉन्ग बुधराए शमन मिराली जो बुधो शमन मिराली जो गानो बाबा और ये हमारे साथ ही माहीन आज एंजल आई है हम प्रोग्राम सुन रहे हैं टॉपिक अच्छा ये आपने शायद गाना भी लिख दिया है ओके जी ओके माहीन और एंजल आप सबको हम वेलकम कहते हैं आप सब परियों को खुशामदीद डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और खूबसूरती में जरा इजाफा लाइए ठीक है और हमारे साथ ही चाचा खालिद कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है मां कोशिश क्या थी तुम गानो बुधूं था ठीक है और असद महर हमारे साथ विलेज हाजी दिलबर से असद महर भाई आपको वेलकम कहते हैं उनके अलावा अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई थैंक यू सो मच आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं क्या बात है जी बढ़िया हो गया और जी मायरा हमारा शो सुन रही है मायरा को वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही है मायरा इस्तेमाल करते रहिए जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने इसीलिए तो हर जगह अवेलेबल करा दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम अच्छा मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ है मीरपुर खास से कहते हैं बहना ना करें भाई ना करें ऐसी तो बात नहीं है वैसे वाकई आपको ऐसा लगता है सच्ची बताए ओके जी मुनव्वर भाई खुश रहें और बहुत शुक्रिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कीजिए आप फेस वॉश का तो कर ही रहे हैं असाई आयूं प्यादा आचूं बाबा वांदो उंदो वाके वाके ऐसे दां सही था चो अच्छा निदड़ी आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया है ठीक है जी ठीक है मीर मुमताज अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं बहुत बढ़िया जी लाड़काना का तमाशा की ज्वाइन करेगा मीर मुमताज अली जतोई एस मुमताज जतोई ओके चाचा कहते हजार खान आपकी पसंद पर एआई जनरेटेड सॉन्ग हाँ जी वो सुनना चाहते हैं हम उनको सुनाएंगे रिजवान अली हमारे साथ कहते बहन कैसी हैं आप नाइस शो है सॉन्ग सुनाएं खुदा और मोहब्बत का प्लीज मैं ट्राई करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे और मुगल उमरानी भाई हमारे साथ है थैंक यू और निदड़ी कहती है कर कर नखरा हाजिर साई नखरा कंदा सी छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो हणंदा आहियूं और महर इरफान सियाज साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं हजार भाई कहते हैं हजरत अली का कॉल है जो चीज मुश्किल से मिलती है वो देर तक चलती है क्या बात है क्या बात है दिस इज गलत बात भाई निदा मुझे समझ नहीं आया था कि ये सिटी का नाम था ये या इंसान का नाम था आई डोंट नो बस लोग मैसेज कर देते हैं मैं वैसा के वैसा पढ़ देती हूँ इंतजार भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं इकबाल लाशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया और अबू हनीफ अलबलोची कहते हैं मुमताज लाशारी का गाना सुनाए मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे और फरवा कहती हैं आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है दिल बच बच बच यू गानो बुधो सैया सैया हाजिर हाजिर और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है भाई को वेलकम कहते हैं वीआईपी प्रोग्राम थैंक यू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयव को न मुखे इयो त बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करण वारा मानू हथ त मथे कयो ऐं कमेंट में हिकु हिकु दफ़ा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त लिखो ॾिसां

ओके जी, डे स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वठी चो, हाणे तो देर न कर, जल्दी वन बाबा, जल्दी वन डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आ। और ताले मरी समारोह भाई में सुन रहे हैं, ताले मरी भाई तहां जो मोहब्बत हुआ तहां प्रोग्राम बुधो पया, आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना। हेलो, अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ है। बतूल बिल्कुल, आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से, आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी आवाज कोयल की जैसी है। कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था, उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज, इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए। वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं था, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे। ठीक है जी, बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए, क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं फिर मुझे मनाना नहीं आता, तो फिर मैं क्या करूँ। तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गाना सुन लिया। अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी, वोट हाजी गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरी खां, कुरबान अली खास के लिए, अली रजा लगारी तां सगर मौजूद आए, थैंक यू।

ஒரு மாதம் ஆகிட்டு வந்த பாபா டி ஸ்கின் பியூட்டி கிரீம் வெட்டி அச்சு माण्हू आहियां सफ़ा सादो नज़र नथो अचे छा नज़र अञा त कोन आयो बीहो बीहो ब्रेक खां पोइ मोटी चवां थी पोइ तव्हांखे हिकु हिकु करे मां नंबर ॿुधायां थी ठीकु आहे तव्हां नोट करे वठिजो ऐं पोइ तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ऐं डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइजो ठीकु आहे सो हाणे तव्हां हिते वेहो मां हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठां थी पोइ जल्दी मोटी अचां थी तव्हां गाॾी न वञिजो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो
2: सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत व जवाबित लागू.

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003835569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: क्या बात है, वापस आ चुके हैं जी दोबारा से हमारे लास्ट और सैडी लिंक में। आप कहते हैं ना सिद्रा के प्रोग्राम का जो लास्ट लिंक होता है वो सैडी लिंक होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जितने भी आपके सैडी वाले गाने होते हैं उठा के भी लास्ट लिंक में फेंक देती हूँ। मैं कहती हूँ ये सारे तो हम लास्ट लिंक में ही सुनेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, बताएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऊट पटांग वाले प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा के देख लिए हैं, लेकिन अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए 2-in-1 फार्मूला भी है। यानी कि आप लोगों के लिए नाइट क्रीम तो हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आप लोगों को फेशियल वाला रिजल्ट मिलता है। फेशियल ऐसा वैसा, बहुत महंगा वाला फेशियल, बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है। ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दोनों जो चीजें ना बहुत प्रीमियम है, बहुत खास है, और ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स की, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स को एड किया गया है। तो इसी वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटी है ना वो इतनी बेस्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। एक और मजे की बात है कि भाई इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती की बात हो और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर किया जाए, बाबा ये कैसे चलेगा? तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर नहीं कीजिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके चेहरे पर ये जो जमा हो चुके होते हैं ना एक्नी प्रॉब्लम्स, या फिर आपके चेहरे पर जो ये एक्नी के निशानात होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनको आप कई टाइम से फेस कर रहे हैं लेकिन आपको सोल्यूशन का पता ही नहीं, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके उन तमाम चीजों को खत्म करना है अपनी स्किन से, और आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई सिद्रा इतना बताते

0: मोगे जेड़ा सिंगार कया थई सवा कुंवार लगे थी ताके कुंवार लगन जी जरूरत ना है पर बस ता इनन सिंगारन खा थोड़ो पाण के बचाण चाहियो था जो तो मेकअप जने ता पाजे चेहरे ते अप्लाई कना ना मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट्स ता के मिली सगन था पर उनन चीजन की अगर तमा साइड रखो ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे साई वाह वाह थी वेंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे डी स्किन जो फेस वॉश भी तमा के मिले पयो तमा करीबी जने स्टोर से वणो ता नथा मिलन ता कोई तमा जल्दी जल्दी नंबर्स से राबतो करे सको था आई नंबर्स की पूरी प्रोग्राम में ता के बुधाईंदी आया आई जेको मा चई वयस ता बाबा मोटी अचा ब्रेक खां पोए ता ता के नंबर हिकु हिकु करे बुधाया थी सो ता के नंबर हिकु हिकु करे बुधाया वन थी ता नोट करी वठो ठीक है
1: रखे ठायो कया ते सिंगार सोहनी लगी थी जण कुंवार सोहनी
0: ओगरी सो पहलो नंबर आहे बुड़ी ट्रे हिकु ब पंज बुड़ी ब पंज नव बुड़ी सत आई बियो नंबर आहे बुड़ी ट्रे ट्रे ब सत ट्रे अठ चार ट्रे बुड़ी आई नव
1: नंबर आहे
0: साउंड सो फनी

गानो साईं भलो हुयो, गानो वणी वयो। माण्हू वरी वरी पुछंदा ॿुधायो त सही डी खूबसूरती काॾा आंदी अथव, ऐं तव्हां हुननि खे ॿुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो करे वठो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वठो। ठीक हो गया। अच्छा, ये फैज़ा अली की आवाज में गाना है जो की मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने लगा लिया। वरना शायद नहीं लगाती। ॾिसो ॾिसो मां केॾी सेल्फिश आहियां। हमारे साथ ये फजली मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आज सिस्टर सजा मुस्कान, कैसी हो डियर स्वीटी? मैं बहुत अच्छी, तुम बताओ कैसी हो? मजे में और दर्द दिल हमारा शो सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच दर्द दिल। और मुनव्वर भाई बस कर जाए, बस कर जाए। महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए, आमीन आमीन आमीन। और कहते हैं कून जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज, थोड़ो तहां के अचण में लेट थी वही है।

रहियो बाबा। सराज में जतोई भाई में सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। दर्द दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया हो गया। निदली कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ ये जियो करे।

पे गाला है कैसी था बचन दी दिल सही गाला सही गाला आई तहां भी केस ताई बचना था सबने के पकड़ी पकड़ी दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कराई दम दिस जो भी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जेहन जे नाए कयो बाबा करे वठो अन्या टाइम अथव आई दी स्किन ब्यूटी क्रीम ताने करीबी जनरल स्टोर्स ते मिली रही है सो वन्यो आई वठी अचो।

ये फरवा की पसंद अच्छी है, अच्छी है। सुठा सुठा गाना फरमाइश कर दिया छोकरी। बरियाम कहते हैं सदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा। हाजिर हाजिर, बिल्कुल यो प्रोग्राम गानो मतलब तांजला शाम वाले प्रोग्राम में हलाय छड़ींदा से। ठीक है, छायाद कंदो थोरो हो जे। अच्छा, ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर, सो हम सुनेंगे। अच्छा, ये आपके कमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रीमेक्स में चल गया है। चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे।

क्या बात है, टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि टी स्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए टी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं, बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। रमजान भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं। अच्छा, मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर सालार, सिकंदर हमारे साथ हैं। मुमताज वाले का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और जी हैं हमारे साथ एसन, कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात थी। उस टाइम कहते ना।

अच्छा भाई, इरम की शादी है, इरम को शादी वाला गाना डेडिकेट कर देंगे, ठीक है। बाकी शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है बताएं। तो उन्हें बताइएगा जनाब, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। ये मेडिकेटेड फार्मूला है और 2-in-1 फार्मूला है, तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। चलें जी, दिमागी दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर। इस गाने की फरमाइश हमें माहीन ने कर दी थी।

बस फिर अब्दुल्ला आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए।

अच्छा मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम वीआईपी है, वो डायलॉग सुनाओ। सुनो जाना मैं बोलने ही वाली थी क्योंकि इस गाने के साथ मैंने एक शायरी रखी थी। What a coincidence। मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से। भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ, तो मेरे पास एक शायरी है वो जरा हम पढ़ लेते हैं।

सुनो जाना, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों? तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों? तुम मेरी नजर का सुकून हो, कोई तुम्हें देखे तो क्यों? तुम मेरी आदत हो और कोई ये आदत अपनाए तो आखिर क्यों? तुम पे जो हक मेरा है वो किसी और का हो तो क्यों? फिर कैसे ना कहूँ तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो आखिर क्यों?

0: बिल्कुल हिदायतुल्लाह, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं जरा ये आरजे वारजे छोड़कर सिंगिंग की दुनिया में आ जाती हूँ। हाँ जी, आपके कानों को खराब करने की जो है ना वो मैंने जरा कसम खा रखी है, तो हाँ जी समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है। फरवा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं, थैंक यू।
1: जाने तू ना जाने तेरी बाहों।
0: अच्छा नरेश भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया। हजार भाई आपका गाना रह चुका है, तो वो जरा हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ तमाम से मिलूं था वेरी 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुपान जो ओ से रुख यार रखना कितने का गलती थी मुझे, तब माजरत कहूँ था। हाँ भाई पोइट्री थोड़ी थी मांगाई थी भैया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा, ये आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी, मुनासिब कीमतों में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सो मोकलानी नाही बाबू, सिन सलामत, सास सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
2: अदा, नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा, जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-310509-03000-310-5109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।

0: मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
3: 03-99-36
4: अपना शहर मैं जी 94

0: जो सूर घट बुधन में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि जो कामयाब इलाज 91-896-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0395894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-358 नालो आहे खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर क्लिनिक लेकर मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आजकल शरण तो

0: मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM.

0: 88 नेटवर्क ते।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: चयो आहे त अमेरिका नओं हमिलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमाल कंदो आहे अमेरिकी हेडनि सां गॾु अहिड़नि हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं निशानो नाहे बणायो
6: अगरि नॉन मार्च के लिए आते हैं, तो जिस तरह पिछली दफ़ा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफ़ा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोअन अमल हुकूमत कराएगी उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी मैं एक चीज कहूंगा खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकले और आप जिस सपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें
7: वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते
5: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण न ॾींदासीं हिन भेरे वन फॉर ऑल थींदो केपी के जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे बंद घिटी तरफ़ न वञे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रूह मूजिबि अमल कयो वेंदो हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहनि ते बंदि थी वञे हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो पीटीआई बानी जूं टे भेनरूं लाहौर में नज़रबंद अलीमा ख़ान खां पोइ उज़्मा ऐं नौरीन न्याज खे बि नज़रबंद करे कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफारिश ते 3 MPO तहत ॿई भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो
8: इंशाल्लाह ताला नए सुबह वाला मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जी रेट ते लेस होंडा सेंटर से आहे जातिन स्पेयर पार्ट्स खुद एक मशीन जे हमें मिले फ्यूल एडजस्टमेंट जरिए ते क्वालिफाई
1: रोशनी मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तारत प्रोफेसर कुर्बेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर

0: शानदार कंप्यूटर्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल का विजिट करें। मजीद रबते के लिए डॉक्टर हुसैन मेमन, मैं मजर स्कूल सिस्टम, 00002724, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल, मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013863।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: रबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
7: सॉन्ग्स तमाम बेहतरीन सॉन्ग्स।

अवल अलाह अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजे कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम।

हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जी। सोहारी सिंध के मलूक मिट्टी ते रहंदड़ तमाम मौजिस बुधंदड़न के लाखीणे लतीफ जी बोली, मेहरान जी छोली, मिठड़ी अमड़ जे लोली जड़ा सोना सलाम। GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे सजी टीम जा कुर्ब कबूल पवन। वज सामाई नवा जा कहड़ा हाल आहिन, अवा खुशबाश आयो, अवा ठीक ठाक आयो, अवा चाक चंगा भलाई मतारा जोड़ आयो। असांजी दुआ है त सदाई तारन में चंडु हुजो, खीर में खंडु हुजो, मेवन में अंबू हुजो, कदें भवांजी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अवां जे लुड़कन जे डुकार ए मुर्कन जो सुकार हुजे, शाल अवां के कोसो वान लगे, शाल अवां डुखियो दी न दिसो, जियो मुर्कंदा महकंदा गुलन जियां टड़ंदा रहो।

خواتین ساتھ میں پہروں آواز تھی چکو ہے.

वेलकम बैक मुझे सामाइन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवां सां वो खातिब आहे मोहब्बतुनि ऐं मुर्कुनि जे अॼोके मेले में असीं अवां सां वो खातिब आहियूं ऐं यकीननि प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे गसनि ते विख विख ते लफ़्ज़नि जा गुलाब अवां जे ख़िदमत में असां ऑफर कंदासीं अवां खे यकीननि भलीकार बि चवंदा रहंदासीं तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि सदाईं सुखिया हुजो ऐं शाल अवां जे मुर्क में अहिड़ी न थिए अहिड़ियूं दुआऊं असां झोल झोल भरे तव्हांजे लाइ कंदासीं ऐं इहे दुआऊं अवां जे लाइ बार बार हज़ार बार कंदासीं सो दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो जेकॾहिं मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो रेडियो सेट या इंटरनेट या थ्रू त तव्हां देर न करियो बसि हाणे ई शामिल थी सघो था मैसेज करण जो तरीक़ो बिल्कुलु SMS टाइप कंदो पहिरीं पहिरीं तव्हां टाइप कंदो MTI जी हा मैसेज वारे पेज ते वञी MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ जो पंहिंजे शहर जो नालो लिखो उन खां पोइ पंहिंजो नालो बि लिखिजो ऐं सेंड कजो मैसेज जेको असांजो नंबर आहे उहो नंबर आहे 888 यानी 888 8881 सिंधीअ में चइबो हुन नंबर खे अवां मोकिलियो मैसेज त तव्हांजा मैसेज दिलि सां शामिल करे वठो अंगण आयम ईद ऐं सॼो ई आजियां दिलि में जंहिं लाइ दीद में भर में भेड़ो सोपी सो ही जेके मोहबती महफ़िलूं आहिनि उन्हनि महफ़िलुनि में अवांजा मैसेज अचणु लाज़मी हूंदा अवांजा मैसेज ईंदा त कंदासीं शामिल ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो ऐं केरु असांजे हिननि इंतज़ार जे घड़ियुनि खे ख़तमु कंदो बाक़ी जेके मैसेज तव्हांजा असांखे जीअं जीअं पहुचंदा शामिल कंदासीं असांखे दोस्तो महिरबानो कदरदानो हिकिड़ो मैसेज पहुतो आहे जंहिंमें लिखियलु आहे त अस्सलामु अलैकुम ऐं ॻोठ आहे नोटो ऐं नोटो खां असांखे यादि कयो आहे रामचंद कुमार कोहली साहब ऐं गोविंद गुल अवां सां गॾु थैंक यू जी कमलेश तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो किरणे

कुर्ब कमलेश ऐं रामचंद तव्हांजो मोहबतूं तव्हां असांखे ॿुधो था अव्हांजा वॾा वर्ड जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहबतूं सदाईं सुखिया हुजो। लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुल रहीम अब्दुरहमान लगारी ओके ऐं मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधनि पिया अव्हां जूं मोहबतूं ऐं मण मोहबतूं तव्हांजूं। थैंक यू अवां बि खुश हुजो आबाद हुजो। थैंक यू भलीकार चवंदासीं। ऐं जनाब असांखे झलूरी जा मैसेज आहे उनमें लिखियलु कुझु कोन लिखियलु आहे सर कॉल जो नंबर कहिड़ो हूंदो उहो नंबर ॿुधाईंदासीं जॾहिं कॉल्स वठंदासीं तॾहिं नंबर ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हां साण बिल्कुलु शेयर कंदासीं त कहिड़ो नंबर हूंदो जंहिं ते तव्हां असांखे कॉल कंदा। तेसि ताईं नोट करे वठो नंबर जंहिं ते मैसेज कंदो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। ॾिसंदासीं त अॼोके असांजे हिन बज़म में शामिल थियण लाइ केरु केरु अचण वारो आहे कंहिंजो मैसेज असां वटि ईंदो त पोइ उहे समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां कंदासीं। पर पहिरीं ट्रैक ॾांहुं हली वठूं। ट्रैक खां पोइ तव्हांजा काफ़ी मैसेज असां वटि टैक्स्ट मौजूदु आहिनि जेके शामिल कराइण आहिनि। थोरो इंतज़ारु कजो। ही ट्रैक तव्हांजे नाम कयूं था सादिक फ़क़ीर जी सदा आहे। सादिक फ़क़ीर साईं जेतोणीक असां वटि न आहिनि रहिया पर हुन जो आवाज़ असां वटि तव्हां क़यामत हूंदो। अचो त गॾिजी ॿुधूं हू परे आहे परे आहे परे आहे।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते इलेक्ट्रिक बाइक रिक्शा, पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 and face Mohammed Pahiyar 03003118956 A1 Autos Mehrapur Nalo Ahi Etamad Jo
2: Ashik Honda Showroom Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Tour Pur Etamad I Ma Akhtar 3S Dealer आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर

हबीबुला थेबो साहब अवां जी तमाम घणी मोहब्बतूं हबीबुला तां लिखियो आहे त आपका शो वेरी नाइस आहे तमाम घणियूं अवां जूं महिरबानियूं आहिनि अवां जे ॿुधण जो अंदाज़ नाइस आहे ख़ूबसूरत आहे इन जे करे जेको आहे सो यकीन अवां खे शो सुठो थो लॻे साज़ ऐं आवाज़ी साथ में हिकिड़ो ट्रैक आहे हिकिड़ो ब्रेक आहे पर गॾु गॾु हूंदासीं छो त इन में को बि विच में ब्रेक न हूंदो जेके बि तव्हांजा मैसेज ईंदा उहा शामिल कबा जेको हाणे ट्रैक मिले पिया कयूं रिहाना तबसुम जो आवाज़ आहे हिन आवाज़ खे अवां हमेशा ॿुधो हूंदो ऐं हिकिड़े हादसे तहत असांजी हीअ फनकारा बि हाणे असां वटि न आहे रही यानी हिन जो को नओं ट्रैक हाणे रिकॉर्ड न थी सघे पर रिहाना तबसुम जो आवाज़ बि असांजे सिंध जे हवाउनि में हमेशा हमेशा अवां जे लाइ गूंजंदो रहे।

MTI स्पेस जो पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। जंहिं बि राह मथां तुंहिंजा पेर पवन, मुंहिंजा गीत हुजनि विखरियल उन्हनि वाटुनि ते।

जी जना पुराणनि गाननि जे करे कुझु क्वालिटी गाने जी बहितर न हुजण जे करे असां ट्रेक साॻे फनकार खे चेंज करण जी कोशिशि कयूं था, ॿियो ट्रेक ॿुधण जी कोशिशि कयूं था ऐं असां सां गॾु रहिजो।

जी जनाब साथ आवाज के साथ में असि आवाज कडूदासी आई आवाज हां प्यारे पेजाए पे गसन से सो जिते जिते बस जो ही आवाज कराए पे ने ताहा के यो बुधाइंदा लंदा असि त अवां के आखरी ट्रैक बुधाइंदासी उनका पय असा न्यूज दे ब्रेक दे हलंदासी उनका पय कमर्शियल ब्रेक का पय ता जो लाइव कॉल्स वठनासी त पोइ फौजिया सुंदर जो आवाज़ गॾिजी ॿुधी था वठूं ऐं ट्रैक ॿुधजो गॾु बि रहिजो जेके जेके मैसेज हिन दौरान ईंदा उहे बि शामिल कंदासीं त पोइ एम टी आई लिखी स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो 888 ते सिंधड़ी जी शाम शो अवांजे नाम

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Park.
2: ज़रियन मोज़े मोसन नकवी जी दौरे दौरान अमेरिका ईरान गालन जी बहाली ते
3: इंडियन जे दौरे ते तेहरान पोतल वफाकी घरू वजीर मोसन नकवी जी इस्कंदर मोमनी से मुलाकात बेतरफन लागापन समेत खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते गालियो मोसन नकवी ईरान जी बी क्यादत साहब मुलाकात कंदो ज़रियन मोज़े मोसन नकवी जी दौरे दौरान अमेरिका ईरान गालन जी बहाली ते भी गौर विचार कयो वेंदो ईरान के तबाह करणो आहे मैशत सख्त मुतासिर करणी आहे या कह मुआहदे ताईं पहुचणो आहे मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया अमरीकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाती मरहले ते पहुची वियो आहियां ईंदड़ ॾींहनि में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पशकियान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी

अमेरिका नओं हमलो कयो त जवाब पहिरीं खां वधीक खतरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो, ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। पासदारान इनकलाब जे तर्जुमान हुसैन मोहबी चयो आहे त अमेरिका नओं हमलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमाल कंदो। अमरीकी अॾनि सां गॾु अहिड़नि हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं निशानो नाहे बणायो वियो।

0: 0242 4246 0100.
1: इरशाद ऑटोस मेहराबर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटो शोरूम मेहराबर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एमिटेड जो वारंटी क्लेम्स विस एरिया जे साइकिल जी बेहतरीन सर्विस खुसूस मा होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग जैपनीज टेस्टिंग मशीन जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी 200003।

जो ॾींहुं छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं। टाइमिंग अव्हां खे ख़बर आहे त सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं टाइम नोट करे छॾींदा, सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। ऐं ॾींहुं अव्हां खे नोट करायासीं 6 ॾींहं, अंगारे जो ॾींहुं छुटी हूंदो आहे, जंहिंमें 3 ॾींहं अव्हां खे ॿुधायोसीं, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं। चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे। पाण प्रोग्राम जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी बीमारियुनि जे हवाले सां अव्हां खे ॼाण ॾिनी वेंदी आहे। असां वटि डेली जेको आहे सो तमामु घणनि बीमारियुनि जा पेशंट्स ईंदा आहिनि, पर जेके पेशंट्स करे करे कुझु ज़्यादा ईंदा आहिनि त सम्झंदा आहियूं त हीअ अॼुकल्ह बीमारी वधीक जेको आहे सो थी रही आहे। इन जे करे उन खे हाईलाइट करण जे लाइ उन मौज़ू ते जेको आहे सो ॻाल्हाईंदा आहियूं। जीअं अॼुकल्ह ट्रांसलेट्स, अव्हांखे ख़बर आहे, हिकु या ॿिए 3 शख़्स खे गले जा गदूद थी वेंदा आहिनि, ट्रांसलेट्स जंहिंखे चइबो आहे, या सिंधी में जंहिंखे चऊं त कलियूं थी वेंदियूं आहिनि। ऐं ख़ासि करे इन जो शिकार नंढा ॿार जेको आहे सो ज़्यादा थींदा आहिनि। उहे नंढा ॿार बि छो थींदा आहिनि, उनजी वजह बि अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। हिकु त ट्रांसलेट्स छा आहिनि, ई छा आहिनि, इन्हनि जो कहिड़ो कमु हूंदो आहे असांजे जिस्म में, ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं वधी वञनि त उनखे छा करणु घुरिजे, ऐं उन खां पोइ उनखे कहिड़ी ट्रीटमेंट जेको आहे सो सही करे सघे थी। जी हा, बिल्कुलु, हिकु तव्हांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त असांजे गले जे अंदरि 2 टिश्यूज़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ो लेफ़्ट साइड, ॿियो राइट साइड्स, जेके सेल्स प्रोड्यूस कंदा आहिनि। ऐं उन्हनि सेल्स जो फंक्शन इहो हूंदो आहे त जेके बि ॿाहिरियां बैक्टीरियाज़ या वायरस हूंदा आहिनि, जेके असांजे खाधे जे रस्ते, मुंहुं जे रस्ते जेके अंदरि ईंदा आहिनि, उन्हनि खे हू उते रोके ऐं जेको आहे सो फायर करे छॾींदा आहिनि या फाइट कंदा आहिनि ऐं पोइ उनखे उते मारे छॾींदा आहिनि। जेको मुस्तहक़ीन हूंदा आहिनि उन्हनि मां हज़ारे मुस्तहक़ीन हिन महिल ताईं फ़ाइदो वठी चुका आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां अलबत्ता दवा मरीज़ खे पाण खे वठणी हूंदी आहे। असांजो जेकी क्लिनिक ते जेके बि पेशंट ईंदा आहिनि, अलहमदिल्ला हिन महिल ताईं उन्हनि खे ईअं सम्झो 90% पेशंट ठीकु थी चुका आहिनि। वधीक जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, को बि डॉक्टर जेको आहे सो फ़रिश्तो न आहे। अलाह ताला जॾहिं शिफ़ा ॾींदो आहे त उतां हुनखे शिफ़ा मिलंदी आहे, पोइ चाहे उहो हकीम हुजे, एलियोपैथिक डॉक्टर हुजे या होम्योपैथिक डॉक्टर हुजे या आम माण्हू ई छो न हुजे, लेकिन जॾहिं शिफ़ा अलाह ताला जिते जंहिं शइ में रखंदी आहे, जीअं कख में बि शिफ़ा हूंदी आहे त उन मां बि शिफ़ा मिली वेंदी आहे।

0: 보는 조사를 알아봐요.
1: तापस रोआड़े छे मन जबरदस्त मुझे लाए पर आऊं रे लचो दिल मन भरजी आई है एडो सुठो मुझे लगायो थैंक यू
0: मेहरबानी कुर्ब
1: कुर्ब खुश हो जो आबाद हो जो जी मजे समय नंबर है 0334352578 6 यानी बुढ़ी 3 34 25 7 86 कॉल ते केर हुंदो उनके लिए स्क्रीन में अखियो विछायल एंड सदासी कॉल ते केर आहे ओके जी कॉल अटेंड था क्यों हेलो अस्सलाम वालेकुम साईं मीरानी साहब खुश आयो चंगा भला मैं तारा जोड़ वाह जबरदस्त मीरानी साहब जगह हाँ मौसम चेंज पी थिए तब्दील पी थिए इन तब्दीली जगह मौसम जी है यह हूँ भी चवंदा आहिनि मौसम ऐं माण्हू जॾहिं मटिबा आहिनि त तकलीफ़ थींदी आहे तव्हांखे छा महसूस थींदो आहे जी मुझे चवण मकसद है मौसम मटबी है न तदे मानू के जुकाम बुखार खंग थी पवंदी आ ए मानू मटबैन तब दिल दुखी पवंदी आ तवा छा था चोइन हवाले सा
0: साईं जे पार के में जा मा थोरो जल्ठो ले तो लौडा
1: अच्छा इने जे करे
0: हमरा के नई वो सवाल ले मा थे बुझाया
1: चलो एकडो कम कयो भला तवा पे दोस्तन ने नाला खणी वठो जेके दोस्ता ना बुधन था वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक्यू सर थैंक यू मेहरबानी ओके जनाब साथ में कंदासी हाल अहवाल नंबर असो 0334352578 6 कॉल अची रही है दिसंदी कॉल कैंजी है उन कॉल के बुधी था वो हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कोशिश क्यों कॉल अटेंड कर वो हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम शायद आवाज कौन पे अचे आवाज अचे पे वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा का मोहब्बती मंगणे निजामाणी साहब खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अवां जी दुआ लगी पई है अवां सा गड नडो एहसान बुधन हुंदो साईं महिरबानी साईं शायर हाफिज़ मोहम्मद रिज़ामाणी असांजी धरती जो तमामु वॾो शायर आहे जेकॾहिं उहो ॿुधे पियो त असांजा भाग भला आहिनि ऐं लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण साहब तव्हां सोहराब निज़ामाणी जो तारीख़ी ॻोठु आहे कढियो गंवर जे वेझो तव्हां ॿुधो पिया किरोड़े कुर्ब अव्हांजा भला सोहराब निज़ामाणी जे ॻोठ जा भाउ मोहबती मंगण अव्हां ख़ुदि झूंगारींदा आहियो ॻाए ॿुधाईंदा आहियो गर्मी लॻी आहे किथे ॻाए सघंदासीं इहा ॻाल्हि सची ठीकु आहे भला दोस्तनि खे यादि करियो था
0: हा
1: हा अच्छा तमामु घणी महिरबानी मिठा माण्हू तमामु घणी महिरबानी तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम जो इंतज़ार था करियो बसि ॿियो छा घुर्जे असांजा सभई प्रोग्राम तव्हां जे नाओ बसि हा चलो थैंक यू वेरी मच लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण शायदि सिग्नल घटि हुजण जे करे कॉल कटिजी वई पर ख़ैर तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असां ॿुधी वरिती आहे ऐं हाणे ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी चांडिया साहब छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे अच्छा अच्छा सभिनी खे भली कार साईं भली कार महिरबानी महिरबानी लख थोरा जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में असां कॉल जो इंतज़ार कंदे कंदे हिकिड़ी कॉल अटेंड था करे वठंदासीं। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, बल्कि कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। 2340-3525-786 जे नंबर ते अव्हां जी कॉल पोइ हाणे कॉल कंहिंजी आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां?
0: हा, लार खान ॻाल्हायां पियो।
1: ज़ोइब खान साहब, भली कार चवंदासीं तव्हांखे। वालेकुम सलाम ऐं महिरबानी असांजी सॼी टीम खे दुआऊं ऐं सलाम ॾियण जे लाइ। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? ज़ोइब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? ज़ोइब तव्हां ताईं?
0: जी, ज़बरदस्त आवाज़ अचे पियो। सही, तव्हांखे साफ़ सफ़ा।
1: हा, अच्छा ज़ोइब, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे ही प्रोग्राम?
0: साईं, मुंहिंजो नंढो
1: पर अॼु ज़ोइब, जेके चवां तव्हां मूंखे ॻाए ॿुधायो त ॿुधाईंदा?
0: बिल्कुल ॿुधाईंदासीं, पर तव्हां असांजी फरमाइश पूरी कोन।
1: सर, असल में कालोन जे विच में बैकग्राउंड में गाना हलंदा आहिनि, फुल गानो थी नथा नशर करे सघूं। बाकी ईअं आहे त जॾहिं सुभाणे वारो प्रोग्राम हूंदो त पहिरीं कलाक में तव्हां मैसेज कंदो त उहो कलाम ज़रूर हलंदो। न न, को मसलो कोन्हे। गीत खारा न चओ, गीत खारा न चओ, ज़मानो चवे त वञी चवे तूं त प्यारा न चओ। हा, ॿुधाए ॿुधाए। महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। अवां ॿुधो पिया GFM लाड़काणो, GFM सखर, GFM मेरापुर, GFM सकरंड, GFM मेरपुर ख़ास ऐं GFM मातली। शो जो नालो आहे जी हा जनाब, सिंधड़ी जी शाम, ऐं RJ आहे यूनिस बका। मोहबतूं अव्हांजे नाम करे वठूं, ॾिसूं था। हलो, जी केरु साहिब? अलहमदुल्ला, अलाह पाक जा किरोड़े कर्म आहिनि। ॿुधायूं अव्हां सां ॿियो केरु थो ॿुधे? हा, उहो ईअं असल में नंबर ते रश आहे। इहो अहिड़ो वीचारो नंबर आहे, इहो टाइम ते इन ते एॾी रश थींदी आहे। जेकॾहिं नंबर खुद ॻाल्हाए सघे आहे न त रीहूं करे मूंखे छॾे भॼी वञे।
0: हा,
1: ॿ नंबर आहियूं कोन, हिकु नंबर आहियूं। अच्छा, मिठा माण्हू, भला अव्हांखे ॻाइण सुठो लॻंदो, रुअण या

0: आई अदी अज तो डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थे अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
0: मां भी वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونو درولی همشی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
4: سونا सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
8: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
9: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569
10: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
11: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: बस न कयो तारीफ़ तव्हां रुगो दुआन में यादि करियो। इहो मुंहिंजे लाइ वॾी ॻाल्हि आहे फ़क़ीर आमिर जिंजी साहब। अवां सां कॾहिं केरु पियो ॿुधे?
1: साईं मुंहिंजा दोस्त न रामचंद कुमार मकवाणो आहे, मामा सिद्दीक पारो आहे, ऐं मुंहिंजो भाइटो अख़्तर अहमद जिंजी आहे, ऐं असांजो दोस्त बेवफ़ा दोस्त चोबन कुमार कुली साहब जेको कुंडली शहर में तव्हांखे ॿुधे पियो,
0: हा हा,
1: उनखे वेलकम ऐं बरकत चवंदासीं। ऐं तव्हांजे लाइ आख़िर में इहो चवां त मौला रब्बुल आलमीन करे कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो।
0: आमीन सुम आमीन। किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब। जी जनाब, साथ ऐं आवाज़ साथ में अवां सां साथ जुड़ियल आहे, सो अवां उन साथ सां साथ निभाईंदो त वाहवा थी वेंदी। त पोइ अॼु असां सां गॾु केरु साथ निभाईंदो, केरु साथ ॾींदो? 0334352578 ते असांखे कयो कॉल ऐं ॾिसंदासीं केरु हूंदो असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, दुआऊं लॻी पियूं आहिनि। ख़ुशि आहियो, केरु साहिब पिया ॻाल्हायो साईं?
2: साईं, तव्हांखे ॿुधो, तव्हांखे

0: जी जनाब, वेलकम भलीकार खुशामदीद। ही आहे जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क। एकी वक्त आवा बुधो पे जी एफएम मातली, जी एफएम मेरप्रखास, जी एफएम मटियारी, जी एफएम मेहरापुर, जी एफएम सकरण, जी एफएम मोरो, जी एफएम लाड़कानो, जी एफएम सखर। शो जो नालो आहे सिंधड़ी जी शाम, यूनुस बकारी जा सलाम। आखिरी साथ, आखिरी लम्हात। सो जनाब, कॉल्स जे लाइ नंबर आहे 0334352578। रिसनाज़ी कॉल ते केरु आहे? हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। केर साहब ऐं किथां खां? अलहमदुल्ला, छा हाल आहे इमाम ॾिनो बंबरो साहब? खुश आयो, ठीक आयो, चङा भला?
1: हा अलहमदुल्ला, अलाह साईं असां दुआऊं फस्ट क्लास, असां बिल्कुलु ख़ुशि लॻा पिया। पर इहो आहे तव्हां कार जेको आहे वाइटिंग खोलियो, नंबर
0: ते वरी असल में टोन जो आवाज़ थो अचे। मां जेॾीमहिल रेडियो शो थो कयां न, त हिकिड़ो तव्हां सां मुंहिंजी ॻाल्हि पई हले, ॾह मथां कालू लॻंदियूं, सभिनी जो गोड़ एतिरो थो थिए जो उहो क्वालिटी न थी वञे। असांजी मजबूरी आहे, छा थो करे सघां। मजबूर आहियां, मजबूर आहियां उन ते हू गानो। काल वेटिंग जे लाइ इशू असां इहो ई हिकिड़ो आहे, त असां काल जेकॾहिं वेटिंग वारो था रखूं, मुंहिंजो अॻे रखंदो आहियां, त सभई जेके आरजेज़ या शो थींदा उन में टोन टोन जो आवाज़ न ईंदो आहे। मां वरी कैन जो आवाज़ अचे थो, माना उहो सुठो कोन पियो लॻे इन जे करे। साईं तव्हां जेको वणे सो ॿुधायो, दोस्तनि जा नाला वठो, गानो ॻाए था ॿुधायो, तव्हां मूंसां खिली था ॻाल्हायो, जेका तव्हांजी मर्ज़ी। दोस्तनि खे सलाम चई सिर्फ़ ॿ सिटूं थल ॻाए ॿुधाईंदा, वधीक न।

0: देश में सागन में के सुरहया तद दिल लगी परदेश में।
1: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त। अच्छा भला हाँ दोस्त ने नाला खड़ी बैठो साई आखिरी लमात है आखिरी लमात में कॉल कर 0334352578 नंबर है असो कॉल से कह हलो अस्सलाम वालेकुम जी जी एक दफो बेहर नालो बुधायो वालेकुम अस्सलाम जी अदा नालो बुधायो पेंजो ओके जनाब एकड़ो असा वट कॉल अचे मुश्किल सा थी वरी उनमें दोस्त असा जी गाल बुधन बजाय रुगो हलो हलो तकन दिसना थी हाणी कॉल ते केर आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: केर साहब है किथा का
2: सर अल्ताफ हुसैन उठो पे गलाया सजावल लग मड़े बुला खान का केड़ा हाल में सुचायो तबीयत ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह सजावल जे वेजो मड़ो बुला खान का ता सके बुदो पे केड़ा हाल है अल्ताफ वोठा साहब
2: आए अल्लाह जा करम लगा पे ना वा गांव लगी पे ता बुदायो सुचायो तबीयत ठीक है ता जे प्रोग्राम माशाल्लाह दादा सुठा से बदे लिया सादे मात्री एफएम कोन पे अली पर अजीड़ी साफा साफा महबूब का पहले कचहरी में ता आवाज साफा।
1: हां वाह वाह वाह वाह वाह वाह थैंक यू अमा सके भी केर तो बुदे
2: मुसागर मुझे बाबा साईं मोहम्मद यासीन ओठो ताने प्रोग्राम बुधे जो है जेके बुधंदा सदन के अल्ताफ हुसैन ओठे जा कोड़ा सारा सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम बाबा साईं के सलाम साईं लख थोरा जी जनाब साज़े आवाज़े साथ में आखिरी लमात है आखिरी लमात है यकीन जी थोड़ा मिंट बचा थोड़ा मिंट में कॉल्स शामिल पे क्यों दिसो था कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: केर साहब है किथा का शहजाद डंगड़ू साहब वहां से गड़ केर पे बुधे जी जी
2: कुछ दोस्त बुधन पा
1: ठीक है सभी जो तमाम घड़ी मेहरबानी लख थोरा ओके जनाब दिसंदासी हाने कॉल ते केर आहे ऐं शहजाद डंगड़े जी कॉल खां पोइ कॉल कनेक्ट थिए थी दिसंदासी कॉल ते केर हूंदो ओके कॉल अची चुकी आहे त कॉल खे अटेंड करण जी करियूं था भरपूर कोशिश ऐं हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम साईं मोहम्मद यूनुस कहिड़ा हाल अथव
1: साईं अलहमदुलिल्लाह केर साहब ऐं किथां खां
2: साईं मां वकार जो तो ईशे लालकाणे खां तव्हां जो शो ॿुधो पिया कॉल लॻाए हलाइण में मशरूफ़
1: हा साईं बिल्कुल बिल्कुल महिरबानी तव्हांजो तव्हां असांखे ॿुधो था ऐं कॉल मिलाईंदे मिलाईंदे नेठ त कॉल मिली वई साईं साईं कुर्ब तव्हांजा कुर्ब तव्हांजा तव्हांजा गॾु बि केरु थो ॿुधे
2: सलीम राजा ॿुधे थो मुंहिंजो मामो यूनुस जतूई अब्दुल जब्बार जिलसार जागीराणी काफ़ी संगत ॿुधे थी घणी आहे पर इहे ख़ासि मुंहिंजा यारड़ा आहिनि
1: सभिनी खे सिक भरियो सलाम असांजो बि क़बूल पवे
2: वालेकुम सलाम मौला तव्हांखे साईं शादाबाद रखंदो मौला वधाईंदो रोज
1: जी रोज़ न हूंदो हफ़्ते में ॿ ॾींहं हूंदो आहे यानी अॼोकी ॾींहुं सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5-7 वॻे ताईं
2: मौला वधाईंदव मौला शान वधाईंदव साईं ॿियो अर्ज़ु आहे हिकिड़ो प्रोग्राम में घणो टाइम आहे
1: बसि हाणे वञी ॿ टे मिंट बचा आहिनि साईं हाणे ई माना हलनि पिया गाना बैक टू बैक तव्हां जीअं ई कॉल ख़तम कंदो तव्हां कुझु ॿुधण में ईंदो
2: न असांखे असांजी दिलि जी चयो को ॿुधाईंदो ॿ टे लाइनूं
1: ॿुधायो ॿुधायो नालो वठी वेठो फनकार जो
2: हा अब्दुल गफ़ूर जो आहे इहो कलाम वाह जादू घर जादू कितो दिलड़ी मेडी को काबू कितो
1: ॾिसूं था ॻोल्हियूं था जेकॾहिं असांखे तकिड़ो तकिड़ो मिली वियो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं
2: अब्दुल गफ़ूर जो अथव तमामु ॿुधनि खे सलाम ख़ासि तव्हांखे सलाम
1: वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम महिरबानी साईं महिरबानी लख थोरा कुर्ब साईं थैंक यू वेरी मच

Quem sabe em que tá? Hã? Mehrbani Ahmed Nawaz sahab, thank you very much. Thank you for the program. Welcome. Welcome to the program. Inshallah, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. मौजिस खवाती नजर आती नहीं थे वंजन जो वायू वारी दे वहां जो यूनुस बकारी वंजन चाहे तो आयाती रही तो सुबह शाम जो पंजे वगे का सते वगे ताई सागे ही नेटवर्क दे सागे ही टाइम दे वहां जो यूनुस बकारी वहां जी खिदमत में हाजिर हों दो कहीं गलती गुस्ताखी जो एहसास थे हो जाए तो माफी जो तलबगार आया फिलहाल यारो यारी मोकलाए तो यूनुस बकारी ने दुआ सा तो जिते भवां जो पेर हो जाए तो खुशियां ढेर खैर खैर हो जाए अल्लाह निकेबान

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream. Glowing.
0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आप जिस सपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
4: कोई दवा वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
5: इस्लामाबाद ते कैंखे पे चढ़ाई करण नदींदा सी हिन बेरे वंस फॉर ऑल थिंदो के पी जो हालतूं सबनी जे सामू आहिन। पीटीआई वट अन्या भी वक्त आहे त बंद घेटी तरफ न वञे। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी खबरदार करे छियो। लाहौर में मीडिया सा गलाइंदे मोहसिन नकवी चयो त लॉन्ग मार्च थियो त हाई कोर्ट जे फैसले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। इन भेरे इन न थींदो त पीटीआई वारा अचन ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। इन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ते मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो। इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण न पिया वञूं, कॾहिं बि कानून हथ में न खणंदासीं। हुकमरान भड़काए रहिया आहिनि पर असीं सियासी माण्हू आहियूं। सियासी चैंपियन ॿुधाइनि त एहतजाज खां सवाइ ॿियो छा कजे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर चयो त पुरअमुन रहण जी त सज़ा मिले पई, बानीअ जूं भेनरूं जेल में आहिनि। 1500 कारकुन गिरफ़्तार थी चुका। सेनेटर्स ऐं असेंबली मेंबरनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो। इस्लामाबाद ईंदासीं त हर पासे पाकिस्तानी झंडा हूंदा। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ जो मशरूत इशारो ॾेई छॾियो। मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त फ़िलहाल मुख़ालिफ़ धुर बेतमादी रिथ आणण जी पोज़ीशन में नाहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत खां बाक़ायदा धार थी त इहा अक़लियत वरी हुकूमत हूंदी। उन खां पोइ बेतमादी रिथ आई त हुन जो साथ ॾिनो वेंदो। पीटीआई खे एहतजाज जो मुकमल हक़ आहे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फज़ल रहमान वधीक चयो त दांधली ज़रिए आयल हुकूमतूं आहिनि ऐं कानून पामाल करे रहियूं आहिनि। घर में बाह लॻल आहे पर कॾहिं नवनि सूबनि त कॾहिं वरी NFC जा मसला छेड़िया वञनि था। मुल्क जे ॿिनि सूबनि में हुकूमत जी रिट नाहे रही। पीटीआई बानीअ जूं टई भेनरूं लाहौर में नज़रबंद। अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नूरी न्याज़ी खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतक़िल कयो वियो। DC लाहौर जो चवणु आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतक़िल कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन। अपघाती बम्बारनि समेत 37 दहशतगर्द मारिजी विया। सुध समा वारी वज़ारत मूजिब ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्द हमलनि बाद कोहाट, हंगू ऐं टल में गुज़िरियल राति ऑपरेशन कया विया। फिज़ाई ऑपरेशन्स दौरान 37 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। सरहदी इलाइक़े में ख़ारिजनि जा थाक बि तबाह कया विया।

0: इतलात वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त ढिंजणा दहशतगर्द लिकी हमला करे रहिया आहिनि। धरतीअ जे बहादुर पुटनि मुल्की दिफ़ा लाइ जाननि जा नज़राना पेश कया। फ़ौज ऐं पुलिस जे जवाननि बहादुरीअ सां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिसो वरितो। सभिनी खे गॾिजी दहशतगर्दीअ जो नासुर ख़तमु। कोहाट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अता तारड़ चयो त पीटीआई जी सूबाई हुकूमत रुगो सोशल मीडिया ते पोस्टू रखण ॼाणे थी। इहो तय आहे त इस्लामाबाद तरफ़ कंहिंखे बि अचण न ॾिनो वेंदो। सोहेल आफ़रीदी कुझु नथो करे सघे त घर हलियो वञे। ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी इस्कंदर मोमिनीअ सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मोहसिन नक़वी ईरान जे ॿी क़यादत सां बि मुलाक़ातूं कंदो। ज़रियनि मूजिबि मोहसिन नक़वी जे दौरे दौरान अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि जी बहालीअ ते बि गौर कयो वेंदो। ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशत सख़्तु मुतासिर करणी आहे। ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशत सख़्तु मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं ट्रंप ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया। अमरीकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जंग बाबति फैसलाइती मरहले ते पहुची वियो आहियां। ईंदड़ ॾींहनि में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पशकियान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी। अमरीका नओं हमिलो कयो त जवाब पहिरीं खां वधीक ख़तरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। पासदारान ऐं इनकलाब जी तर्जुमान हुसैन मोहबी चयो आहे त अमरीका नओं हमिलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमालु कंदो। अमरीकी अॾनि सां गॾु अहिड़नि हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं निशानो नाहे बणायो वियो।
1: जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस तरह
2: जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
4: साथी जिंदगी में करते रहते हो, लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल माहिरवई जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03000 3105109
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000 3385 69
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601 00

0: लाइन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ब्यौरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehrabpur ke ho to aawaz bhi Mehrabpur ki hai. Sunte raho GFM 94.

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।

0: जी दोस्तों, लाइव कॉलिंग खां अॻु में मां अव्हांखे पंहिंजो हेल्पलाइन नंबर ॿुधाइणु चाहियां थो, छाकाणि त मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट जे हवाले सां अव्हांजी को बि फीडबैक आहे या अव्हां पंहिंजे मनपसंदि जनरल स्टोर ते जेकॾहिं पंहिंजे शहर में जेकॾहिं अवेलेबल कराइणु चाहियो था, त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करिणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे
1: 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।
0: जी दोस्तों, असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03003-19667। लेकिन इन खां अॻु में असां अव्हांखे पंहिंजो हेल्पलाइन नंबर ॿुधाईंदासीं, जंहिं ते अव्हां कॉल करे प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे मनपसंदि जनरल स्टोर या पंहिंजे इलाइक़े तर वेझे शहर में कराए सघो था। उहो आहे असांजो हेल्पलाइन नंबर 03000-310-510-9। इन ते कॉल करे अव्हां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था असांजे पिणी प्यारे मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिबु ऐं एम सिद्दीक़ साहिब सां।

ऐं मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब जे नाम ई ख़ूबसूरत कसीदो कयूं था असांजे सिंध जे सुरीले आर्टिस्ट तुफ़ैल संजराणी जे आवाज़ में। अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं इन कसीदे खे। ही न फ़क़त मलिक ज़फ़र इक़बाल जी एफ एम 94 मैरापुर जे तमामु सभिनी ॿुधंदड़नि ऐं मिल्क राइस ब्यूटी शो जे ॿुधंदड़नि जे नाम

जी वेलकम बैक, प्रोग्राम मिल्क राइस ब्रिटिश शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहरापुर। प्यारे से लोगों के लिए प्यारा सा कसीदा, और प्यारे से लोगों के लिए मिल्क राइस की प्यारी सी प्रोडक्ट

0: जी दोस्तों, ये मोहब्बत हुआ है नवाज हूँ ऐं हिकड़ो बियो कॉलर असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे। कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हैलो, हुसैन बख्सियाल साहब, वेलकम भलीकार, ख़ुश आमदीद। नवाबी संगत सॼीअ खे सलाम। कहिड़ा हालनि साईं, ख़ुशि आहियो? दुआऊं दुआऊं ए वन अलाह जा एहसान। काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी।
1: हा बिल्कुलु सर, माशाल्लाह मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थी। राति मुंहिंजी कॉल अटेंड न कई या कॉल मुंहिंजी न लॻी। मां बेहद ख़ुशि हुयुसि जो मां चयो त मुंहिंजे भाउ जो प्रोग्राम हींअर बिल्कुलु ॾींहों ॾींहुं माना तरक़ी कंदो पियो वञे ऐं असांजा वधि में वधि ॿाहिरि प्रोग्राम शामिल थियनि था। बाइका जी रश हुई, उन रश जे करे आऊं जी कॉल न टाइम ते लॻी ऐं मां प्रोग्राम तव्हांजो ॿुधो। शामिल न थिया थिए को मसलो न आहे, पर तव्हांजो प्रोग्राम पूरो ॿुधोसीं।
0: रश वधीक आहे। अव्हांजी नवाबी संगत कीअं लॻी पई आहे? ख़ुशि आहे? नवाबी संगत मां हिन महिल ताईं केरु केरु जेको आहे त असांजी प्रोडक्ट इस्तेमाल करे रहियो आहे? पूरी बिरादरी त कोन थी करे, पूरी पूरी करे आहे त ज़फ़र इक़बाल साहिब जेको आहे त मूरे कॉल करे गुलनि जो हार मूंखे पाराया। नवाबी संगत मजा हिक भी दोस्त बुधो हुसैन बख्सियाल साहब अवां सा हुज्जत मोहब्बत थी वे सबनी सा है मुझी कॉलर सा आए लिसनर सा जेके भी जी एफ एम 94 तोड़े जी एफ एम नेटवर्क जा जेके लिसनर्स हन उनन सबनी सा मुझी मोहब्बत आ त मां तव्हां ते हुजत इहा कयां थो त नवाबी संगत जो घटि में घटि को हिकु दोस्त बि न रहे असांजी जेको प्रोडक्ट जेका आहे त परचेज़ करण खां। लख थोरा लख थोरा। त पोइ सुभाणे कहिड़ा कहिड़ा नवां नवां सुभाणे कहिड़ा कहिड़ा नवां नवां शामिल कंदो जिन जेको आहे प्रोडक्ट वरिती सुभाणे मूंखे जेको आहे न उहो ज़फ़र इक़बाल साहिबु फोटो वरी उन्हनि जो बि मोकिले जीअं।
1: हा बिल्कुलु, असुल सर ईअं आहे त माना मुंहिंजी नवाबी संगत मां हितां सिर्फ़ जेको आहे मूं सां जेको हर पासे मीरापुर में उहा आहे असलम चन्ना साहिब ऐं आऊं आहियां ॿियो मुंहिंजो मुनीर मंसियाल आहे। बाक़ी नवाबी संगत आहे उहा तालुक रखे थी पीर ॻोठ ऐं खैरपुर मीर सिटी जे अंदरि।
0: जी जी
1: हा बिल्कुलु, इहा आहे प्रोजेक्ट उते अञा अवेलेबल न आहे। बाक़ी बिल्कुलु छा आहे त आऊं
0: पर साईं तव्हां हेल्पलाइन नंबर मिल रहा आहियो उन्हनि दोस्तनि खां, उन किथे जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो, साईं करे ॾींदो।
1: त ख़ासि सलाम आहे की 94 मेरापुर जेको असांजो इंजीनियर साहिबु आहे जेको तव्हांजी ट्रांसमिशन असांखे पहुचाए थो एहसान ख़्याल।
0: मुलाक़ात कोन्हे मुंहिंजी हुन दोस्त सां ऐं इनशाह मेरापुर अचण थियो त पोइ मुलाक़ात लाज़मी कंदासीं हुन दोस्त सां बि।
1: इनशा
0: लव यू सर, कुर्ब, थैंक यू, मोहबतूं, ओके, अलाह हाफ़िज़।

0: जी दोस्तों, कॉलर मौजूद है लाइन थे, एकड़ी कॉल शामिल करना से प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं केदा का
1: मरम अली बलोच शहर डेपारजन का तो बोला
0: है। मरम अली बलोच केड़े शहर का?
1: शहर डेपारजे का।
0: सेठार जा
1: डेपारजे शहर का
0: है। बेपार जो
1: जी जी
0: यो यो केथे आ केड़े तालके केड़े जिले में आ?
1: सेठार जे भरसा बेपार जा शहर।
0: सेठार जे भरसा बेपार जा चाहे टाउन आ तालको तो ना है नालो न बुधवा मु
1: खैरपुर जिलो
0: खैरपुर जिले जे अंदर टाउन आ?
1: जी जी
0: टाउन आ जी आ खैरपुर जिलो असा यो सिंध में वडे में वडो जिलो आ एराजी लिहाज का तमाम जी। वेलकम भलीकार साईं
1: असा जो इको अर्ज़ा त ता फरमाशी प्रोग्राम इन जे टाइम ते रखी सके तो या दोस्तन के लाइ भलो थींदो इन दोस्त घणा जी शामिल थन तवां जे प्रोग्राम
0: में फरमाइश शामिल कंदा से इन में भी फरमाइश शामिल कंदा से जेतरी थी सकियों पो हाने टाइम बुधो न सर इन प्रोग्राम जो टाइम हुंदो आ एकड़ो कलाक उन एकड़े कलाक में गाल बोल भी करनी हुंदी आ हवा सा ना
1: जी जी देखो ता क्रीम जे बारे में जको मा चाहो था यो क्रीम भी मना असा के इते शहर में सठारे में भी न तो मिले आई मेरापुर में ता पांच ड्रेस बुदा जे के स्टोर में मिले
0: असा जी जी जी जी लख तो
1: माल भी करे सको
0: लख थोरा मा पेरियो सब खा पेरियो भा के जको ना असा पजे जनरल स्टोर्स बुदायो असा पजे मायनातन मोतबर है मोहतरम दोस्तन जा जनरल स्टोर जा नाम बुदायो सब खा पेरियो खुशी जनरल स्टोर मेरापुर
1: जी
0: फैजान जनरल स्टोर मेरापुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मेरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मेरापुर कोरी जनरल स्टोर मेरापुर जावेद जनरल स्टोर मेरापुर अलकरम जनरल स्टोर मेरापुर इन खां अलावा जैसे अवां के कें जनरल स्टोर से अवेलेबल कराणो आ या पंहिंजे शहर में प्रोडक्ट अवेल कराणी आ कें जनरल स्टोर से या जो जनरल स्टोर वो पाण इंट्रस्टेड है तो वो असांजी हेल्पलाइन नंबर से कॉल कंदो जैसे गाल बोल करे सके थो ज़फ़र इकबाल साहब सां साईं जन अवां के प्रोडक्ट अवेलेबल करे ॾींदा 0300 310 510 9 इन ते कॉल करे ज़फ़र इकबाल साहब या एम सिद्दीक साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदो ऐं प्रोडक्ट अवां जे शहर में अवां जे तर में वेझे में अची वेंदी बाक़ी न त मां तव्हांखे जेतिरा जनरल स्टोर ॿुधाया आहिनि इन्हनि सभिनी ते मेरापुर में मिली वेंदी
1: ठीकु आहे तव्हां असांजे एड्रेस सही ॿुधायो असां इंशाल्लाह
0: सुभाणे शाम वारे प्रोग्राम में मतलबु तव्हां मूंखे फीडबैक ॾींदो हुन क्रीम खे इस्तेमाल करे या साबुण खे बि ठीकु आहे साईं जी जी कहिड़ी दोस्तनि जा नाम बि शामिल कयो फरमाइश बि ॿुधायो जी वरी महिरबानी जी जी वरी महिरबानी सॼी संगत खे सलाम कुर भलक लाइक जी फरमाइशी बि आहे फरमाइशी सिलसिलो बि आहे पर जेको आहे त असां कॉल इम्पोर्टेंट वधीक सम्झंदा आहियूं सो हिकिड़ो दोस्त असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे कॉल अटेंड कंदासीं अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां
2: नवाबी
0: संगत नवाबी संगत मूंखे टाइटल ईअं लॻो पहिरियों त मूंखे ईअं लॻो को ॻोठु आहे को ज़िलो आहे को तालुको आहे मां पाण कंफ्यूज़ हुउमि पोइ ॾाढो मज़ो आयो साईं तारीफ़ करायो त सोशल मीडिया जो तव्हांजो व्हाट्सएप ग्रुप आहे पाण में कचहरी आहे चिट चिट हेलो आयल आहे पंहिंजे ग्रुप में असां शेयर कयो अथव प्रोडक्ट जो जेको आहे को बि जंहिं वरिती आहे परचेस कई आहे उन दोस्त फोटो कढी करे उन जो पैकेट जो मोकिलियो आहे त पोइ कलर त ॿुधायो कहिड़ो आहे असांजी प्रोडक्ट जो रंग पैकेट जो अॼु सुभाणे ग्रुप में बि शामिल कयो सभु दोस्त वञी वठो नवाबी संगत मां त सभिनी खां वधीक मूंखे अलाए छो उमेदु हिकिड़ी थी बीठी आहे छाकाणि त इन तो नालो बि प्यारो आहे नवाबी ऐं माण्हू बि सभु नवाब आहिनि बिल्कुलु बहितरीन बहितरीन अवां छा चवणु चाहींदो वधीक मैरापुर में लाजमी मिले थी तमाम काफी अवां के जनरल स्टोर बुधायन बेहंद मिले जिते अवेलेबल कराण चाहो ते ता हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कियो असा जो हेल्पलाइन नंबर है 0300 310 509 जी
3: नंबर तो अब गायो मां वो नंबर मो चाहे मार आप तो कंदो मान को ये ते न भी न खाई त पो माउ दे जो दिन खाला घर बखाना
0: बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी दोस्तन जा नाम शामिल करना चाहिए दो सलाम दो को
3: मुझे नाज संगदा दोस्त ने अजीब रापल पोटरो हाल साईं सिकंदर चाहे होते न बस क्याला रहमान शमलानी है तमाम की सजी टीम के सलाम
0: वरी मेहरबानी वालेकुम सलाम आया वहां जी सजी संगत के सलाम कुर्ब लव यू लक लाइक जी दोस्तों एक पास अवहां जो यो हुकुम आहे त फरमाइशी सिलसिलो हुजे ऐं फरमाइशी सिलसिले सां गॾु गॾु वरी कॉल्स जेके अटेंड न कंदासीं इन जो रुख थींदो मां सोचां पियो त हिकु अधु थोरो असांखे विथी मिले त असां उन अव्हांजे पसंदि जो जेको आहे कसीदो ॿुधायूं अव्हांखे म्यूज़िकल उहो मनकबत पर असांखे कॉलर आहे हिकिड़ो लाइन ते इहो कॉलर अटेंड कंदासीं असां शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप थी वई तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदे हिकिड़ो कसीदो शामिलु कयूं था उनखां पोइ असां कॉलर ॾींदासीं

0: जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आऊं आहियां अबे चौहान आहियां मां ॿुधी रहियो जी एफ एम 94 मेहरापुर असां सां गॾु हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां जी सुंदस साहिबा वेलकम भलीकार ख़ुश आमदी तव्हांखे नवाबी संगत सॼीअ खे सलाम मुंहिंजा छा पिया ॿुधनि माशाल्लाह माशाल्लाह ॾाढी ख़ुशी थी ॾाढी ख़ुशी थी इहा इहा ख़बर ॿुधी त एडवाइज़र हिकिड़ी फीमेल आहे ज़बरदस्त हाणे मुंहिंजे लाइ अञा जेको आहे त वधीक हिकिड़ो मतिलबु इमेजिनेशन वधी वई त हिन ग्रुप जी जेका आहे त वुसत केतिरी आहे ऐं एतिरो इहो मां हिननि खे एडवाइस ॾिनी त तव्हां बेटर खां बेटर कमु करे सघो था फ़क़ति जेको आहे त जस्ट गेट टुगेदर लाइ न हुजे हिकिड़ो सोशल प्लेटफॉर्म आहे अवां वटि अवां कमकार करे सघो था सुठा असांखे एडवाइस छा ॾींदो अवां नवाबी संगत जा एडवाइज़र आहियो असांखे हिन चैनल जे थ्रू हिन प्रोग्राम जे थ्रू ऐं हीअ ब्यूटी आहे त ॾाढी ख़ुशी थी हिकिड़ी फीमेल कॉल कई आहे मिल्क राइस ब्यूटी शो आहे मिल्क राइस जे हवाले सां प्रोडक्ट जे हवाले सां छा ॻाल्हाईंदो ऐं माण्हुनि खे छा पैगाम ॾियणु चाहींदो छा एडवाइस ॾियणु चाहींदो अॼोके हालात मूजिबि
1: हिमत न हारे अगरि औरत हुजनि त औरत ते हिमत बिल्कुलु बि न हारे
0: बिल्कुलु
1: औरत मूंखे यकीन कंदो जेको मां अॻिते आई आहियां न मां यकीन कंदो मां हर फील्ड में आई आहियां
0: क्या बात आहे रही चुकी हींअर तव्हां अवां प्रैक्टिसिंग लॉयर न आहियो प्रैक्टिस कोन कई अवां
1: क्या बात आहे
0: कहिड़ो स्टेशन वेझो रहंदो अवां जो ट्रायल कराइजे ऑडिशन वठाइजे कहिड़ो स्टेशन वेझो रहंदो ओॾहीं त मां कोन थो चई सघां जी एफ एम नेटवर्क जे स्टेशन मंझां अवां ॿुधायो कहिड़ो जेको आहे तव्हांखे वेझो रहंदो त उते अवां जो ऑडिशन कराइजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे यू विल बिकम आरजे इंशाल्लाह माय बेस्ट विशेस विद यू असां जूं नेक तमन्नाऊं अवां सां गॾु अवां थी सघो था बिल्कुलु न न मूंखे बेहद ख़ुशी थी त हिकिड़ी फीमेल कॉलर ऐं फीमेल बि उहा जेका ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में रही चुकी आहे अञा बि पाण मञाइण लाइ जेको आहे त हू ऐं ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आहे आरजे थियण त पोइ तव्हां जहिड़े माण्हूअ लाइ तव्हां जेको आहे त पंहिंजी थाट्स पंहिंजी सोच अॻिते डाइवर्ट करे सघो था अॻिते पहुचाए सघो था गुड थियो

0: ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂ ਕਰੋ ਕਰੂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ ਕਹਿੰਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ वड़ी महरबानी वड़ी महरबानी वालेकुम सलाम ए मोजा भी अवां जी सजी संगत के सलाम अवां के सलाम अवां जी फैमिली के सलाम जो अवां में एड़ी पोटेंशियल जका है ता है घरा अवां के सपोर्ट आ है जो अवां इतरी अचीवमेंट कई आ है
1: मतलब फैमिली सपोर्ट है
0: ना है या है गुड टू यू थैंक यू थैंक यू उम्मीद तो प्रोग्राम में शामिल रहो ए मिल्क राइस के हवाले से एडवाइस दियो ना इन पैंजी फीमेल्स के असा जे इन जे थ्रू प्लेटफॉर्म जे थ्रू तो मिल्क राइस यूज करे दिसन इस्तेमाल करण जो शर्त हुंदो आए उन खा पो वरी रिजल्ट जी दावा आए तो टिन दिन में जो ये ग्लो आने थी चेहरे से मिल्क राइस ब्यूटी सोप भी आ मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम भी आ जी जो आवाज कुछ ड्रॉप पे थे ठीक है उम्मीद प्रोडक्ट के अगते रिकमेंड कर पान भी अप्लाई कर पान भी इस्तेमाल कर थैंक यू वेरी मेहरबानी प्रोग्राम बुधन लाए ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू

0: जी दोस्तों, नवाबी संगत में ॾाढी ख़ुशी थी त प्रॉपरली ग्रुप वर्किंग आहे हिननि जी ऐं हुन में एडवाइज़र पिणु आहे सा बि हिकिड़ी फीमेल, ऐं इहो वॾो उत्साह आहे हुननि फीमेल्स लाइ, तमामु वॾो मैसेज आहे त जेके पाण मञाइणु चाहिनि थियूं, को कमु करणु चाहिनि थियूं, जॉब जे हवाले सां थिए या फीमेल एम्पावरमेंट जे हवाले सां कमुकार करणु चाहिनि थियूं, उन्हनि लाइ अदी जेका आहे त तमामु वॾो हिकिड़ो आइकॉन आहे, सिंबल आहे त मैरापुर नंढनि हिकिड़े टाउन ऐं सिटीज़ में उते जेको आहे त फीमेल एतिरी कमनि में ऑलरेडी रही हुजे ऐं जिन एतिरा कमु कया हुजनि हींअर हुननि जी विश्व लाइ, त उहा आर जे पिणु कमु करे, ऐं इहो उहो प्लेटफॉर्म आहे जिते पंहिंजो पैगाम ऐं पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल तव्हां लखे हज़ारे माण्हुनि ताईं तव्हां पहुचाए सघो था। मां उन्हनि लाइ बिल्कुलु नेक तमन्नाऊं आहिनि। असां सां गॾु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। वालेकुम असलाम, केरु साईं, किथां खां?
1: सर वसीम अबड़ो, मैरापुर खां।
0: वसीम अबड़ो, वेलकम भलीकार, मां जी फाइनली कॉल लॻी वई मुंहिंजा भाउ।
1: बिल्कुलु सर, बिल्कुलु बिल्कुलु, छा हाल आहे? ख़ैरात वेसे सही आहे?
0: A1 A1 दुआऊं मुंहिंजा भाउ, अमा ॿुधायो, ख़ुशि आहियो?
1: अरे रब करीम जा एहसान, दुआऊं लॻी पिया आहिनि, कर्म लॻा पिया आहिनि।
0: मूंखे बेहद ख़ुशी थी अव्हांजी कॉल कनेक्ट थी वई
1: सर,
0: दिलि सां
1: लॻे न पई,
0: लॻी वेंदी हिमत मर्दा मदद ख़ुदा।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु, असल में
0: ॾिसो न, असल में ॾिसो, असल में ॻाल्हि इहा आहे त ही तमामु तर सभई जेके आहिनि त महबूब जेके आहिनि दोस्त संगत साथ आहिनि, उहे जेको प्रॉपरली असांजो ऑफिशियल नंबर आहे हुन ते अप्लाई कनि पिया। जेकॾहिं कुझु दोस्तनि खे हेॾां होॾां मुंहिंजो कॉन्टेक्ट मिलियो हुन ते कनि पिया, त उहा असां शामिलु कोन पिया करे सघूं, छो त उहो थी वेंदो वरी हिकिड़ी फरमाइशी सिलसिलो ॿियो। सो ही कॉमनली असांजो ऑफिशियल नंबर आहे 0300-931-9667। त इन ते कॉल करे सभई दोस्त शामिलु थी सघनि था प्रोग्राम में, कीअं पियो लॻे प्रोग्राम ऐं छा चवणु चाहींदो, ऐं असांजे प्रोडक्ट जे हवाले सां अव्हांजो छा रिस्पॉन्स आहे, अव्हां इस्तेमालु कई आहे या करणु चाहियो था?
1: सर तमामु बहितरीन प्रोग्राम पियो हले तव्हांजो, ऐं प्रोडक्ट जे हवाले सां बिल्कुलु असांजो दोस्त आहे अलतसवर, जेको जनरल स्टोर आहे
0: जी,
1: अली ॾिनो गांगरो
0: जी,
1: हुनखे बिल्कुलु असां हिते कुझु दोस्तनि बि पुछा कई, असां बि हिनखे माना रिक्वेस्ट कई आहे त बाबा हे सामान खणी अचो, ख़ुशी सां असां ॻाल्हायोसीं त बाबा असांखे प्रोडक्ट खपे तव्हांजी, लेकिन कल ऐं थोरी मसरूफ़ जे करे असां वञी न सघियासीं। इनशा
0: ख़ुशी साहब सां न, ज़फ़र इक़बाल साहब सां ॻाल्हि कई हूंदी मां,
1: न सर आई थिंक ख़ुशी साहब जो नंबर,
0: ख़ुशी जनरल स्टोर आहे हुननि जो नाले सां, ज़फ़र इक़बाल साहब, ज़फ़र इक़बाल साहब आहिनि।
1: सही, पोइ असां ज़फ़र इक़बाल साहब सां ॾिसूं सां मुलाकात करे, मां हुनखे चयो त असांखे माना तव्हां ॾियो त असां हिन पंहिंजे दुकान शॉप ते रखूंसि।
0: इहा ॻाल्हि अवां मूंसां कई अॻु में बि, ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि कई, अवां पंहिंजो शायदि कोई एड हलाइणु चाहियो पिया।
1: जी जी जी जी बिल्कुलु,
0: एड जे हवाले सां प्यारा एड

0: हवाले सां असांजो स्टेशन डायरेक्टर आहे
1: अच्छा
0: बाबर शेख साहिबु, ऐं अव्हां जो नंबर उनखे या उनजो नंबर अव्हांखे शेयर थो पियो कयां, उहो सॼो अव्हांखे पैकेज तरतीब रेडियो ते हलाइणु चाहियो पिया न मुंहिंजा भाउ?
1: जी जी बिल्कुलु,
0: हा त पोइ उहो अव्हांखे सुहिणे नमूने सां सुहिणो एड बि ठाहे ॾींदो ऐं पैकेज बि तव्हांखे जेको बि आहे डिस्कस उहो करे वठंदो।
1: ठीकु आहे सर, ठीकु आहे। ॿियो केरु आहे? हिकिड़ो तव्हांखे ॿी रिक्वेस्ट हुई, प्रोग्राम में काफ़ी दोस्त जॉइन करणु चाहींदा, लेकिन जेको प्रोग्राम जो नंबर आहे न
0: जी
1: उहो मिले नथो। मां माना इहा सजेशन कंदुमि त माना तव्हां 15 मिंट 20 मिंट मतिलबु माना विच में वफ़के वफ़के में सां न तव्हां पंहिंजो नंबर डिफाइन कंदा वञो, ताकी जेके दोस्त जॉइन करणु चाहिनि नवां माण्हू आहिनि न,
0: ठीकु
1: पोइ उन्हनि खे माना रहनि में
0: ठीकु थियो। गुड एडवाइस भाई,
1: असां तव्हांजे नंबर लाइ रियलिटी पुछो था, माना 15 खां 20 दोस्तनि खे कॉल कई तॾहिं वञी असांखे नंबर मिलियो।
0: ईअं थिए थो पियो, मां इनशाला नंबर रिपीट कंदो
1: रहंदुमि,
0: ॿुधाईंदा रहंदासीं नंबर पे जेको आहे कॉलिंग नंबर।
1: बाक़ी इनशाला प्रोडक्ट पाण बि इस्तेमालु कंदासीं, दोस्तनि खे बि सजेशन।
0: लव यू, थैंक यू। लख थोरा फरमाइश करणु चाहींदो कोई?
1: हा सर बिल्कुलु, फरमाइश कंदासीं। उस्ताद मंज़ूर सखीराणी जो कलाम आहे, हिकु तुंहिंजी सिर आहे जेको पंध पियो कराए।
0: इहो उस्ताद मंज़ूर सखीराणी जो आहे?
1: जी जी,
0: इहो त रिसेंटली वेझण में असांजे प्यारे दोस्त जेको आहे तुफ़ैल संजराणी साहिब बि गायो आहे न।
1: तुफ़ैल
0: जी जी जी, हिकु तुंहिंजो ई सिर आहे जेको पंध थो पियो कराए। जी जी जी बिल्कुलु, इहो इहो इहो लास्ट में थी वेंदो बसि, छाकाणि त 9 मिंट बचिया आहिनि। हिकु कॉल खां शामिलु कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल्हि अवां सां कंदासीं, नंबर टैली रिपीट कंदासीं, अवां जो इहो फरमाइश सभिनी दोस्तनि खे डेडिकेट कंदासीं। लास्ट
1: इंशाल्लाह
0: असांजी कोशिश आहे त पूरे पाकिस्तान लेवल ते ई प्रोग्राम हले। वॾी महिरबानी, लव यू, लख लाख सर, थैंक यू, कुर्ब मोहबतूं।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? नज़ीर अली जरवार साहब, वेलकम बलिकार, खुशामदीद। हेलो जी प्यारा
1: साईं, तां जे सा दुकान ते विया से मेरा पर।
0: अच्छा
1: साईं, ओ दुकान सा के थोड़ो न लदो।
0: ठीक आ,
1: घुमी घुमी साईं मोटी आऊं पाणे जी चौकी का।
0: असा पुजाईंदासे तां के बिल्कुल दुकान ते, असा जे निगाहन सा गोलींदा वेंदो। असा तां के सोलो कम ता करे देनो। असा वा के नंबर बार बार रिपीट क्यों था त हेल्पलाइन नंबर आहे, उन ते गाल कंदो तो दुकान भी लभजी वेंदो, ऐं प्लस में पंहिंजे मनपसंद जनरल स्टोर ते बि अवेलेबल कराए सघो था असांजी प्रोडक्ट।
1: जी साईं जी,
0: हीउ ज़फ़र इक़बाल साहब जो नंबर आहे, नोट करे वठिजो।
1: जी साईं जी,
0: 0300 310 510 510 9। इन ते कॉल कंदो न, प्रोडक्ट भी मिली वेंदी, तव्हां जिते अवेलेबल कराइण चाहियो था उते भी थी वेंदी, जनरल स्टोर भी ॻोल्हिजी वेंदो। हिकु न आहे जनरल स्टोर जो तव्हां मोडी आया आहियो। असांजा मैरापुर में खोड़सरनि जनरल स्टोर ते इहा प्रोडक्ट अवेलेबल आहे, जंहिं मज़ा ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर। ॿुधो ॿुधो ॿुधी वठो ॿुधी वठो जी जी ज़फ़र इक़बाल साहब सां ॻाल्हि ॿोल कयो आहे भले। बाक़ी अव्हां कहिड़े ॻोठ खां ॿुधायो? न न, इनशाह जेको आहे त कॾहिं जेको आहे त मेहरापुर मां विज़िट लाज़मी कंदुमि, पोइ उते ई ज़फ़र इक़बाल साहब सां बि कचहरी कबी। खोड़सारनि दोस्तनि खे उन ॾींहुं टैक्स करे छॾिबो, जेको आहे त रेडियो वसीले ॿुधाए छॾिबो, त असां उते मौजूदु आहियूं, मुलाक़ात बि कंदासीं अव्हां सॼणनि सां सभिनी सां। बहरहाल इहो तव्हां कयो आहे, हाणे थी वियो, अदरवाइज़ प्रोडक्ट सेम आहे, सभिनी जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहे, जंहिं तां बि मिले तव्हां इस्तेमालु करे था सघो। दोस्तनि जा नाव शामिल करणु चाहींदो, प्रोग्राम जो वक़्तु तक़रीबन जो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे, सो हिन करे नाव शामिल कयो।
1: साईं, मुंहिंजो नानो सादिक अली ॿुधी रहियो आहे।
0: बिस्मिल्लाह नाने साईं खे सलाम।
1: मुंहिंजो बाबा साईं बशीर अली जरवार ॿुधी रहियो आहे।
0: चाचा साईं खे बि सलाम असांजा।
1: ऐं बशीर इरशाद अली जरवार ऐं अनवर अली जरवार,
0: ॿिन्हिनि भाइरनि खे दोस्तनि खे सलाम मुंहिंजे तरफ़ां बि। थैंक यू, वॾी महिरबानी, लव यू, लक लाइक, थैंक यू।

जी दोस्तों इन सा गड अजो को प्रोग्राम पेंजी पुजाणी ते पोतो पेंजे मेज़बान आबिद चौहान के दींदा इजाजत वरी मिलंदा से नए एपिसोड सा गड सुभाणे तेसी ताई अवां ही ट्रैक एंजॉय कंदो ए मुखे दींदा इजाजत सिन सलामत साथ सलामत अल्लाह नेगेबान।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हाई कोर्ट के फैसले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो इन भेरे इन न थींदो त पीटीआई वारा अचन ए मुल्क 10 या 20 दिन बंद थी वने इन भेरे मुस्तकिल हल कढ़ियो वेंदो अफगानिस्तान सा लागापा दहशतगर्दन के रोकण ते मामूल ते न ईंदा आलमी मार्केट के हिसाब से तेल महांगो थींदो आहे हालतूं बरकरार रहियूं त 1000 रुपए में भी लीटर पेट्रोल न मिलंदो
4: सितंबर 2026 है मतलब दो साल मुकम्मल होने को इन दो सालों में हमने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया हमने कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया हमारे आईनी और कानूनी और जमहूरी रास्ते थे वो सब हमने अपनाए एक सियासी पार्टी इससे ज्यादा क्या कर सकती है मुझे स्पेस नहीं दी जा रही तो आखिरी रास्ता कौन सा होता है एहतजाज का ही होता है और पुरमन एहतजाज मेरा आईनी मेरा कानून मुझे इजाजत देता है सब करते हैं हम अवामी लोग हैं हम जमहूरी लोग हैं जमहूरी अखदार की कदर करते हैं मैं वो हक इस्तेमाल करूंगा ये मुझे कोई छीन नहीं सकता अगर किसी ने छीनना है या मुझे इजाजत नहीं देनी तो आईन का वो शिक निकाल दे जिसमें मुझे आईन इजाजत देता है कि मैं पुरमन एहतजाज कर सकूं 27 सितंबर को हमारी आज पार्लियामानी इजलास में यह फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को हम पूरी जोर और कुवत के साथ पुरमन तरीके के साथ निकलेंगे इंशाल्लाह ताला और ये हक हम जरूर इस्तेमाल करेंगे
3: कंहिं खां डिॼण वारा न आहियूं एहतजाज जो को बि हक़ खसे नथो सघे पीटीआई जो 27 सेप्टेंबर खां हर हाल में इस्लामाबाद ॾांहुं लॉन्ग मार्च शुरू करण जो ऐलान केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो त पार्लियामानी पार्टी इजलास में फ़ैसिलो थियो आहे त 27 सेप्टेंबर ते निकरंदासीं गुज़िरियल ॾींहुं पीटीआई बानी जे टिनी भेनरुनि खे हिरासत में वरितो वियो 26 नवंबर 2024 खां पोइ असांजे कारकुननि ते जबर जारी आहे हाणे एहतजाज खां सवाइ को बि दग नाहे बचियो इहा हिकु टेस्ट मैच आहे जेका असां ई खटींदासीं पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो त असां इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण न पिया वञूं कॾहिं बि कानून हथ में न खणंदासीं पुरमुन रहण जी त सज़ा मिले पई बानीअ जूं भेनरूं जेल में आहिनि सवें कारकुन गिरफ़्तार थी चुका सेनेटर्स ऐं असेंबली मेंबरनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे सियासी चैंपियन ॿुधाइनि त एहतजाज खां सवाइ ॿियो छा कजे
5: इंशाअल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे और इस बार में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है मेरा किसी चल रही है दुनिया में पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है पता है उनको में पेट्रोल नहीं मिल रहा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं 1000 रुपए का भी लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा बिकॉज जिस तरह दुनिया की सिचुएशन है कल या परसों भी हमने जिस मुश्किल से अपनी शिफ्ट निकलवाई है डार साहब उसमें मौजूद थे हमारे बाकी लोग मौजूद थे एक एक शिफ्ट के पीछे हर बंदा जान मार लोग मौजूद थे एक एक शिफ्ट के पीछे हर बंदा जान मार
3: घरू वजीर मोहसिन नकवी नवनि सूबनि वारे होड ते कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो त नवनि सूबनि वारो मामिलो ऐं आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा सूबनि वारो मामिलो थधे या गर्म खां घणो अॻिते आहे

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-83-47।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम नेटवर्क। जी एफ एम नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिल जी गाल जे ॿुधंदड़नि सभु

मायनातन महबूबन दिलरुबा दोस्तन पिनी प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी सूरहा साह में पोए बे सुरकानहा सूरहा साह में पोए बे सुरकानहा माठ हुई मन अंदर पार ऐं पिटका नहा सूरहा साह में पोए बे सुरका नहा माठ हुई मन अंदर पार ऐं पिटका नहा दर्द गोढ़ा अखिन में बणिया शाहिदी दर्द गोढ़ा अखिन में बणिया शाहिदी प्यार में तो ॾिना छाही तोहफ़ा नहा रात भर साह में आहे चुभंदी रही रात भर साह में आहे चुभंदी रही सार तुझी हुई लोह कोका नहा रूह मुझी उठी रात तोखे सड़ियो रूह मुझी उठी रात तोखे सड़ियो शेर मुझा मगर तोड़े पहुता नहा शांत जज्बा करे सर्द सारा छड़िया शांत जज्बा करे सर्द सारा छड़िया नैण सागया हुआ तन में उल्का नहा वक्त जा पेर ऐं पंध साॻियो मगर वक्त जा पेर ऐं पंध साॻियो मगर जुस्तजू जीअ सां हेल खुटका नहा वक्त केॾो मटाए छॾियो अथई मिठा वक्त केॾो मटाए छॾियो अथई मिठा शाहिदा लै तो वटि छो दड़का नहा सूर सारा हा साह में पोइ बि सुॾका नहा माठो ई मन अंदर पार पिटका नहा

दोस्तों शाहिदा खोकर जी खूबसूरत इन गज़ल से गड अज के प्रोग्राम जो आगाज एक खूबसूरत ट्रैक से कदे अचो तो गदी ये गीत इंजॉय क्यों तुझ यादू अही अकेला आई।

वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, अव्हां जी बज़म मां ॾुखारा वञूं पिया। वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, अव्हां जी बज़म मां ॾुखारा वञूं पिया, वरी कोन वरबो अव्हां ॾांहुं वापसि, वरी कोन वरबो अव्हां ॾांहुं वापसि, अखियुनि में समायूं सितारा वञूं पिया। अव्हां बेरुखीअ जी न सौगात सौंपियो, करे माठ मुर्की खुदारा वञूं पिया। जीअण पोइ कहिड़ो असांजो दुनिया में, जीअण पोइ कहिड़ो असांजो दुनिया में, कयो कुर्ब में था किनारा वञूं पिया। अजल जो सने हो पुनो पाण ताईं, अजल जो सने हो पुनो पाण ताईं, हुआ साहब बुत खे उधारा वञूं पिया। करे याद को या विसारे असांखे, करे याद को या विसारे असांखे, छॾे शाहिदा सभु सहारा वञूं पिया, वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, अव्हां जी बज़म मां ॾुखारा वञूं पिया।

और दोस्तों वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं ऐं अवां सां खुड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, अवां जूं फोन कॉल्स बि अटेंड कंदासीं। हींअर ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं, ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Agar Khubsurti Chahiye.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध ऐं वठी अच।
4: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
5: हा भाग भरी चंगो थो लगे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
6: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रिया और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।
8: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा ब कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबन के उॾाम ॾियन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
9: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
10: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, ठरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।

0: नाला शामिल कियो दोस्तन जा जी जी नाम शामिल कियो साईं दोस्तन जा
1: दोस्त मुंजा इलाही नी मां तीन जारो बुदे के तैयार में जन पर जानी तो ना उन्हें नाले
0: जी
1: बाकी करा हम कुछ और नहीं गली गोल मेरा या सिख बड़ा सलाम बाऊं बदी
0: वडी में
1: लोग बाकी बदन का
0: कबूल कर साईं लख लख लाइक मोहब्बतों थैंक यू
1: अल्लाह को सलाम
0: जी दोस्तों बिया महबूब भी असि वेटिंग लिस्ट में लगल है शामिल कंदासे बियो कॉलर अस्सलाम वालेकुम केर साईं किता खां
2: साईं वालेकुम सलाम साईं पप्पू पिताफी गोठ मीर पिताफी खां
0: पप्पू पिताफी के वेलकम भलीकार खुशामदीद पप्पू साईं केड़ा लन खुश आयो
2: साईं खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब साईं जी भलाई साईं तवा दे खैर आ खुश आयो
0: मालिक जा एहसान दुआओं दुआओं अवां भाईरन जू लख कुर्ब अवां प्रोग्राम में कॉल कंदा आयो अवां जा थोरा
2: मेहरबानी साईं तवां जो प्रोग्राम अहिड़ो सोनो सजाए खणी ईंदा आहियो त असांखे बि ॿुधणो आहे न साईं

0: ओडू पेश इमाम अजान दिती एडू गोंड खोल सरकार आ गए।
1: हाय हाय हाय हाय क्या बात है।
0: आके नमाज कजा कर पीछे पे पढ़ सुन दी उठू अदब करो सरकार आ गए।
1: वाह
0: जी साईं
1: लव यू साईं लव यू कमाल कमाल लाजवाब ख्याल तमाम प्यारो दोस्तों का नाम शामिल करना चाहेंगे तो जी जी क्या बिस्मिल्लाह
0: दोस्तों में साईं निसार पिता के तवा के बुदे तो आए
1: लखतोरा
0: साईं अनवर सोल के तवा के बुदे तो
1: लखतोरा
0: एयरपोर्ट आ रिजे बुदे अंज तो रात मुखवसरी है बुदे आ
1: केड़ी एयरपोर्ट का
0: सखर एयरपोर्ट का साईं।
1: वाह वाह वाह वाह सखर एयरपोर्ट मुझे पाड़ो आ
0: लखतोरा
1: वड़ी मेहरबानी मोहब्बतूं सभिनी दोस्तनि जूं कुर्ब
0: ओके ओके।

और दोस्तों वक्त थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। अव्हां जूं कॉल्स शामिल थींदियूं प्रोग्राम में, ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: जी वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सा गरा हूं है आबिद चौहान मादर खायूं थोड़ी देर जी कथा कलामी माफ प्रोग्राम में शामिल करदा से गड़ी कॉल अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा का
1: हेलो
0: साईं केयर किथा का हेलो
1: हेलो
0: सलाम हाजी कॉल कनेक्ट ही चुकी आए मदर खाया मैं ये कॉल शामिल को न तो करे सका गाल बोल कौन थी सके असा से गड बियो कॉलर मौजूद है लाइन ते कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा का
2: वालेकुम सलाम नमस्ते
0: जी आवाज अमा जो ड्रॉप पे थे सोना खान कड़ा हलन मुझा भा खुश आयो आवाज अमा जो काफी कटजे पे सोना खान
2: हाने अच्छे पे आओ
0: अच्छे पे हो बिल्कुल पर ड्रॉप थे पे हो किथा पे गलायो सोना खान
2: सर जेकमा बात
0: जेकब बात हां हां कड़ा हलन मुझा भा खुश आयो
2: खैर सर अलम
0: के पे लगे प्रोग्राम
2: माशाल्लाह
0: जी
2: प्रोग्राम तां
0: जी जी बुधायो
2: तीर मारना मारो
0: जी
2: तीर मारना मारो संबंध क्या रखना है प्यार प्यार करना क्या रखना
0: जी
2: बस इतना
0: जबरदस्त पर हाँ जो आवाज काफी ड्रॉप रहे हो सो उम्मीद तो दोस्तन वाजे क्लियर बुधो हो जे नाव शामिल करना चाहिए दो को प्रोग्राम में
2: हां सर प्रोग्राम पे
0: सलाम बड़ी मेहरबानी
2: आप खोर सर आप
0: कुर्ब कुर्ब
2: सलाम अशफाक नियाजी के
0: जी
2: सर एक प्रयोग आर जी खान चाहे तो मेरा बस आपके पर सर सलाम प्रोग्राम
0: वालेकुम सलाम
2: बुधो दे सर
0: कुर्ब लव यू लक लाइक सर थैंक यू
2: सर आसा बुराए जो
0: जी
2: सॉन्ग बुधायो
0: जी जी बुधायो केंजो
2: ममताज
0: लाशर जो बुधाइंदा से प्रोग्राम बुधारो प्यारा कुर्ब
2: हां
0: थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज़
2: खुश होने जा रहा हूं

0: इंतिहाई असांखे दुख थींदो आहे जॾहिं अवां सां प्रॉपरली ॻाल्हि ॿोल कोन थी सघंदी आहे, आवाज़ किथे नेटवर्क जे मसले या किथे ॿियो को इशू। सो प्रोग्राम में कॉलर बि शामिलु कंदासीं ऐं गीत बि अवां जी फरमाइशूं बि पूरियूं कंदासीं। अव्हांखे अक्सर शिकायतूं हूंदियूं आहिनि त प्रोग्राम में काफ़ी ऑलरेडी ब्रेक्स हूंदा आहिनि, बिल्कुलु इहे बि ज़िंदगी जो हिसो आहिनि। ब्रेक बि असांजी ज़िंदगी में ज़रूरी आहे। सो कॉलर आहिनि असां सां गॾु, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां?
1: वालेकुम सलाम अली खान,
0: अली खान जो तोई कहिड़ा हालनि? मुंहिंजा भाउ ख़ुशि आहियो? दुआऊं दुआऊं लख मोहबतूं अवां जूं। अली खान, अवां यादगीरीअ सां कॉल कंदा आहियो प्रोग्राम में। पहिरां ईअं कोन्हे को ही अधु मुनी सिंध ॿुधे पई, उतां खां कॉल्स अचनि पियूं त पोइ नेटवर्क ज़ाहिर आहे बिज़ी रहंदो आहे। लख थोरा लख थोरा मोहबतूं। जी जी बिल्कुलु, जलाल चांडियो बि शामिल कंदासीं प्रोग्राम। ॿुधा रहिजो प्यारा।
1: ठीकु आहे ठीकु आहे, जहिड़ो बि जलाल आहे।
0: जी जी जी जी, वरी महिरबानी। थैंक। जी दोस्तो, बैक टू बैक असां कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। कॉल शामिल कोन थी सघी प्रोग्राम में। सो असां अवां जी फरमाइशन बि आहिनि असांजे ज़िमे, फरमाइश बि पूरी कंदासीं ऐं कॉल बि शामिल कंदासीं, अवां सां खुड़ सारियूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं।

जी दोस्तों, अजोके प्रोग्राम जी अवाजी पहरी फरमाइश प्रोग्राम में शामिल क्यों था ममताज लाशारी जी खूबसूरत आवाज में अच्छो तो गद जी ही ट्रैक एंजॉय क्यों।

0: में ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को हम फ्री जोर और कुव्वत के साथ पुरमन तरीके के साथ निकलेंगे इंशाल्लाह ताला और ये हक हम जरूर इस्तेमाल करेंगे।
1: कहीं का डिजण वाला नायू एहतजाज जो को भी हक खसे न तो सके। पीटीआई जो 27 सितंबर का हर हाल में इस्लामाबाद दा लॉन्ग मार्च शुरू करने जो ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी जो चवण हो तो पार्लियामानी पार्टी इजलास में फैसलो थो है तो 27 सितंबर से ही निकलंदी। गुजरल डी पीटीआई बानी के टिन्नी भेनरुन के हिरासत में वरतो वो 26 नवंबर 2024 का असाज कारकुनन जबर जारी है। हाँ एहतजाज का सवाल को दग ना बचो। यहाँ एक टेस्ट मैच है जो अस ही खटींदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो चवण हो तो अस इस्लामाबाद से चढ़ाई कर न पा वनू कदें भी कानून हथ में न खड़ी पुरमुन रहने की सजा मिले पई। बानी जो भेनरू भी जेल में सवे कारकुन गिरफ्तार थी चुका है।

0: पीटीआई बानी जूं टई भेनर लाहौर में नजरबंद अलीमा खान खां पोए उज़्मा ऐं नूरी नियाज़ी के भी नजरबंद करे कोच लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। डीसी लाहौर जो चवणु आहे त पुलिस जी सिफारिश ते 3MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोच लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा खान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो।
1: और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे और इस बार में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है मेरा किसी चल रही है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है पता है, उनको में पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1000 रुपए का भी लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिकॉज जिस तरह दुनिया की सिचुएशन है, कल भी कल या परसों भी हमने जिस मुश्किल से अपनी शिफ्ट निकलवाई है, दास साहब उसमें मौजूद थे, हमारे बाकी लोग मौजूद थे, एक एक शिफ्ट के पीछे हर बंदा जान मार।
0: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी नवनि सूबनि वारी होड ते क़ाइम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो त नवनि सूबनि वारो मामिलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूरु ठहंदा। सूबनि वारो मामिलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे।
2: सूबों की बात कर रहा है, सूबों को टुकड़े करने की बात कर रहा है और हुकूमत खामोश, हुकूमत में शामिल जमात खामोश, उसका एक फर्द बोल रहा है। वो होता क्या, मुल्क के अंदर उसकी हैसियत क्या है, उसकी पहचान क्या है? वो जिसके घर का नौकर है उसके घर की अपनी नौकरी करे, उसके बर्तन धोए, कपड़े धोए उनके, यही उनकी ड्यूटी है। मुल्क के मसायल से उसका कोई सरकार उसकी जो बस हम भी नहीं है कि आप मुल्क के साथ खेलते रहें और हम तमाशा देखते रहें।
0: हुकूमत जो हिकु हिसो सूबनि खे टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे पियो ऐं हुकूमत ख़ामोश आहे। हुकूमत में शामिल पार्टियूं ख़ामोश आहिनि। हिकु फ़र्द ॻाल्हाए पियो, उहो थींदो केरु आहे? मुल्क अंदर उन जी हैसियत कहिड़ी आहे? उन जी सुञाणप छा आहे? हू जंहिं घर जो नौकर आहे उन घर जी नौकरी करे। जेयूएस सरबराह मौलाना फज़ल रहमान मोहसिन नकवीअ खे 7 सुरियूं ॿुधाए छॾियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फज़ल रहमान जो चवणु हो त जेको शख़्स सूबनि जी ॻाल्हि करे पियो उन जो मुल्क जे मसलनि सां को बि वास्तो नाहे। एतिरा बेवस असां बि न आहियूं जो तव्हां मुल्क सां खेॾंदा रहो ऐं असां ख़ामोश रहूं। मुल्क नवनि मसलनि जी सट सिंध में 6 इंतज़ामी यूनिट ठहणु घुर्जनि। असां खां हिकु गवर्नर खसियो वियो, हाणे असांजा 6 गवर्नर थींदा। MQM बि नवनि सूबनि जो रिंगट बंदि न कयो। MQM जे कन्वेनर ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी, फारूक सत्तार ऐं ॿियनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त नवनि सूबनि जो क़याम पाकिस्तान जी आइनी ज़रूरत आहे। मुल्क में वध खां वध इंतज़ामी यूनिट ठहिया वञनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर बि चई रहियो आहे त नवनि सूबनि ते कमु तेज़ीअ सां जारी आहे। सूबनि बाबति आइन वाज़े आहे, केरु ग़लति फ़हमीअ जो शिकार न रहे।

एम क्यू एम जी क़यादत जेका ॿोली ॻाल्हाए थी उहा क़बूल करण जोॻी न आहे। उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जी अक्सरियत पाण खे सिंधी समझे थी। एम क्यू एम लसानी बुनियाद ते विरहाङे ऐं नफ़रत जी सियासत करे रही आहे। सिंध असेंबली इन मनसूबनि बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो ठहराउ ज़रिए ॾेई चुकी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण एम क्यू एम अॻवाननि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद अमल ॾींदे चयो त सिंध हुकूमत खे अतरादू कोठींदड़ एम क्यू एम वारा पहिरियां पंहिंजो मैंडेट साबित कनि। कराची खे भताखोरी ऐं ॿोरी बंद लाशनि जी सियासत एम क्यू एम ॾिनी। हाणे फितने फसाद विगोड़नि ऐं नवे वारे ॾहाके जी सियासत चाहिनि था।

0: GAFM KTN News।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।